ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं और अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है, एफएम रेडियो लेक सिटी। और अब आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6

0: दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM बैंड 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। और अब आइए जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं शेष कार्यक्रम।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, गुण सीखने में कभी भी आलस्य ना करें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। ये था आज का चिंतन। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस कान भाग 188। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा

ये आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनेगा शायर और सेवानिवृत्त राजेश रेड्डी से बातचीत। 11 बजे रंग तरंग,

12 बजे यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। 2:30 पर सुनेगा सदाबहार नगमे और 3 बजे सखी सहेली। सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा दोस्ती बिना जग सुना कहानी पद्मश्री भूरी बाई, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार भूरी बाई के बारे में सुनिएगा। और मुझे कुछ कहना है, किस्तों पर खरीदारी कितनी सही, और कुछ उपयोगी टिप्स

शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, 5 बजे छाया गीत सुनेगा। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सुनिएगा ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। 7 बजे पहुंची साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, इसके अंतर्गत सुनिएगा गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रिकर की बातचीत भाग दूसरा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटिका मंगल वरदान, लेखन कुंभेश श्रीवास्तव, निर्देशन है पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे चाहेगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 188।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा

देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: किलक की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम की महिमा का गान संत तुलसीदास ने जैसा किया है वैसा संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है और श्री अनूप जलोटा अपने कंठ से इन रचनाओं को

0: को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने सुरों से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आँखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनूप जी, हमें इस भक्ति रचना के बारे में बताइए जिसका हमने जिक्र किया।
1: ठुमक चरित रामचंद्र सबसे पहले पंडित डीबी पलुस्कर जी ने गाया था, और ऐसा गाया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया।

कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं, जिससे कि भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।

भगवान राम की वो आयु है, वो अवस्था है कि अभी चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कोई उठा देता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाए।

0: माँ है, या जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में यह कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है।
1: क्या बात।

गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान राम के सुंदर चेहरे की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं। और कोई कवि होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है या जैसे चंद्र।

0: बहुत सुंदर, सचमुच हम आंखें बंद करके बैठे थे और जिस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा, आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी, श्री राम भजन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस रूप को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
1: भगवान राम के कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शबरी हैं, जैसे केवट हैं, तो केवट का एक भजन है मैं बहुत गाता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन आपको
0: बहुत अच्छा लगेगा।
1: राग गुजरी तोड़ी के रंग को लेकर इसे कंपोज किया गया है।

भगवान राम ने सोचा केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने पूछा, जरा स्पष्ट करो, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला, प्रभु आए।

0: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के गाए

के नजर देख लो इधर चूड़ियां पे तुम करो ना फिकर भूल ना जाना दिल को लेकर घायल मन है जख्मी जिगर जब से लड़ी तुमसे नजर हम है उधर तुम हो जिधर आओ जिकार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम का गाया रेल का डब्बा फिल्म का गीत। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और गुलाम मोहम्मद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पतिता फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे पतिता फिल्म से। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई गांवों में खिली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में परछाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। नूर लखनवी ने इस गीत को लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे हम।

0: दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था, नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

प्रीति एक ऐसी बोल रही दुनिया, दाग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

थी हमारी जहाँ पहली मुलाकात। याद है तुझे चपाटी का वो फुटपाथ, हुई थी हमारी जहाँ पहली मुलाकात।

0: हस्बैंड तू है मेरी वाइफ,
1: यही ऑफिसर से तो रहेगा सारी लाइफ।
2: क्या कहा?
0: अरे मैं हूँ तेरा हस्बैंड तू है मेरी वाइफ,
1: यही ऑफिसर से तो रहेगा सारी लाइफ।
0: लाइफ पे करेंगे हम फिर कभी रॉ।

0: याद है तुझे वो मेरा कान तोड़ सांग
1: सांग छपा है कब थी मुर्गे की बांग
0: याद है तुझे वो मेरा कान तोड़ सांग
1: सांग छपा है कब थी मुर्गे की बांग
0: तूने उसी बांग पे कहा था वंशवार।

0: जग्गू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी मधुबाला चावेरी की, भरत व्यास की रचना आपने सुनी और हंसराज पहल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूलिए बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत सविता सिंह को दीजिए। नमस्कार।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विको बज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विको टर्मरिक

हम बोल रहे हैं विविध भारती से। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।

कर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए जख्मी फिल्म का गीत। ये आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गौहर कानपुरी की ये रचना है और बप्पी लहरी की तर्ज।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
7: रुक जा बुड्ढू।
8: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
9: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
8: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

फिर कब मिलोगी। यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मुकेश की आवाजें थी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

हाथ की सफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश के और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। सविता सिंह को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।

0: si questo te but
1: अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच

0: दीर्घकालिक समझौते हुए हैं जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
8: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से

0: कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे।

0: अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangkhetkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister.

0: सिर्फ ज़रूरतें पूरी करना ही ज़िंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी ज़िंदगी है। यूँ तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियाँ औरों के नाम करना भी ज़िंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी ज़िंदगी है।
1: बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ में शुरुआत की है आज आपने। कदम से कदम मिलाकर हम भी साथ में चलते हैं और हमारे श्रोता भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते ही जाते हैं। यूं ही नहीं, ये 90 वर्षों का सफ़र ऐसे ही तय हो गया। और आज मैं हूं आपके साथ में डिम्पी,
0: और मैं आंचल। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और बात करते हैं आज के नमस्कार उदयपुर की, तो ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे में मॉर्निंग ब्रीफ में हम बात करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर की, साथ ही देंगे प्रमुख स्थानीय खबरें और आईपीएल अपडेट,
1: और उसी के साथ में आज पर्यावरण संवाद होगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे,
0: और साथ ही ट्रैवल टॉक में हम बात करेंगे जवाई की,
1: और जागरूकता के बारे में बात की जाए तो एआई और बदलते कार्य संस्कृति के बारे में भी आज हम हमारे श्रोताओं से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में इस गीत के साथ।
0: बिल्कुल।

0: हवाओं में घुली जो आवाज है वही तो आकाशवाणी का अंदाज है। 90 सालों से जो दिलों को जोड़ रही हर खबर में सच्चाई का साज है। संस्कृति की खुशबू, गीतों की पहचान, हर भाषा में बसता इसका सम्मान। गांव शहर हर दिल तक पहुंची ये धुन, भारत की आवाज है, भारत की शान है।
1: क्या बात है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए आकाशवाणी आज भारत की चेतना, संस्कृति और इतिहास का सबसे बड़ा गवाह और साथ ही साथ डिजिटल माध्यम बना हुआ है। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष की एक गाथा सुनहरे सफर के रूप में तय कर रहा है और ये 90 वर्ष किसी तरह से आप देखिए कि विशेष रहे हैं, क्योंकि हर साल हर वर्ष एक नया कोई कीर्तिमान या फिर कोई बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं के जरिए जुड़ती ही चली गई।
0: बिल्कुल लिंपी, भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय रेडियो प्रसारण सेवा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और बाद में वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और वर्ष 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया।
1: बिल्कुल, और आप देखिए कि आकाशवाणी का ये जो नाम भी अपनाया गया ना, तो अपने आप में ये नाम जन जन के साथ में ऐसे जुड़ गया कि मनोरंजन हो चाहे संगीत हो, घर घर तक पहुंचाने

0: की एक मुहिम चली और रेडियो जब जन जन तक बहुत प्रसिद्ध था, घर घर में बजा करता था, तो आकाशवाणी का एक ऐसा नाम है कि वो नाम सभी की जबान पर ताजा रहता था, और आज भी लोग इसके कार्यक्रमों के साथ में उसी भावना के साथ जुड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल, सुबह की शुरुआत लोगों की रेडियो पर आने वाले समाचारों से होती थी और शाम को लोग परिवार के साथ बैठकर गीत, नाटक और अन्य कार्यक्रम सुना करते थे। उस समय आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि लोगों के जीवन का अहम हिस्सा था।
0: बिल्कुल, चाहे वो सेहत से संबंधित जानकारी हो, चाहे फिर वो नाट्य का मंचन हो जो कि रूपांतरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, या फिर गीतों की महफिल हो, या फिर आप कह लीजिए कि एक हम लोगों के साथ में जो श्रोता का संवाद चलता है व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल चलता है, और पहले टेलीफोन के माध्यम से जो आता था, SMS आते थे, उन सभी माध्यमों से हम अपने श्रोताओं के बीच एक अहम पहचान रखते हैं। लेकिन हमारे श्रोता भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं के साथ में हमने ये सफर तय किया है।
1: बिल्कुल, आपदा के समय भी आकाशवाणी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या कोविड, आकाशवाणी ने समय समय पर सही और जरूरी जानकारी हम तक पहुँचाई है। आज के डिजिटल युग में जब मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का बोलबाला है, वहाँ भी आकाशवाणी पीछे नहीं है। अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी की विश्वसनीयता और सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की तो हमारा न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन जो है, जो कि बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, इस न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से अब लोग कहीं से भी हमारे किसी भी स्टेशन को सुन सकते हैं। बस केवल उस स्टेशन को ट्यून करने की ज़रूरत है और किसी भी तरह की परेशानी उसमें नहीं आती।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होना केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं बल्कि यह हमारे देश के विकास, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और समर्पण के साथ कोई भी माध्यम समय की कसौटी पर खरा उतर सकता है।
0: बिल्कुल, और जहाँ तक आकाशवाणी उदयपुर की बात हम कर रहे हैं तो हमारे मेवाड़ अंचल के बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सार्वजनिक रेडियो स्टेशन हमारा आकाशवाणी कहलाता है, और दशकों से स्थानीय संस्कृति, लोक संगीत और सूचनाओं को प्रसारित कर क्षेत्र के लोगों का पसंदीदा हमसफर भी बना हुआ है आकाशवाणी उदयपुर, जिसमें हम FM रेडियो लेक सिटी, साथ ही साथ मीडियम वेव का चैनल भी चलता है
1: उदयपुर।
0: बिल्कुल, और आपको बताएं कि इस वर्ष, क्योंकि 90 साल का सफ़र हमने तय किया है, तो इस वर्ष इस अवसर पर बहुत सारे उपलक्ष्य, इसी मतलब बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आकाशवाणी द्वारा जैसे कि मैराथन हो गया, वॉकेथन हो गया, उसी के साथ साथ में कई जगहों पर शास्त्रीय संगीत और संगीत के विभिन्न कॉन्सर्ट भी किए जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं को बता दें कि आकाशवाणी उदयपुर की ओर से भी Akashvani@90 संगीत समारोह आयोजित होने वाला है 15 मई 2026 को शाम को 7:30 का समय रहने वाला है। सभी आमंत्रित हैं। सुगम संगीत और गजल का ये कार्यक्रम होगा जिसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह हिरण और डॉक्टर पामेल मोदी ये संगीत और गजल को प्रस्तुत करेंगे। MLSU यानी कि मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में बप्पा रावल सभागार में ये कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आकाशवाणी आकर आप अपने
1: आमंत्रण पत्र ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।

तो आपने जो धुन बजा दी है उससे ये इशारा हो चला है कि अब हमें आईपीएल की अपडेट हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करनी है। वैसे तो हमारे श्रोता भी आईपीएल के साथ में जुड़े ही रहते होंगे, लेकिन 13 मई के खेलों की बात करें तो आईपीएल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। रायपुर में खेले गए इस मैच में जीत के साथ ही आरसीबी आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष टॉप पर पहुंच गई है, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इसी के साथ अब बताएं कि इस इकलौती पारी में किंग कोहली यानी कि विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं तो T20 और आईपीएल इतिहास में एक नई उन्होंने रचना लिख दी है। सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले वे खिलाड़ी बने हैं और उसी के साथ साथ में 9वां आईपीएल शतक यानी कि रिकॉर्ड है उनका, 105 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेली और इसी के साथ 9वां आईपीएल शतक उन्होंने इसमें

0: चढ़ा है।
1: बिल्कुल, और अब बात करें आज के मुकाबले की, तो आईपीएल के 58वें मैच में गुरुवार को पंजाब किंग्स अपने दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला में मुंबई इंडियंस की मेजबानी करेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पिछले 4 मैचों में लगातार मिली हार ने श्रेयस की टीम को मुश्किल में डाल दिया। पंजाब के लिए मुकाबला प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेहद अहम है। उसे अपने बाकी बचे 3 मैचों में कम से कम 2 जीतने के लिए अनिवार्य है। दूसरी ओर प्लेऑफ से बाहर हो चुकी मुंबई के लिए यह केवल अपनी साख बचाने की लड़ाई है।
0: आई

0: तो देखिए, जहाँ पर एक तरफ आईपीएल का मौसम चल रहा है, वहीं एक और हम बात करते हैं उदयपुर के तापमान की, मौसम की। तो भीषण लू का प्रकोप बना हुआ है, 43 डिग्री के पार भी पहुंच चुका है उदयपुर का तापमान, और जिसके तहत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। हम सभी को सावधान रहना चाहिए, ऐसी भीषण गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में बात करते हैं बिजली कटौती की। तो बढ़ते लोड और रखरखाव के कारण उदयपुर में 14 मई यानी कि आज के दिन भी बिजली कटौती रहेगी, जिसमें भोपालपुरा, अशोकनगर, शक्तिनगर सहित 20 से अधिक इलाकों में 6 घंटे की बिजली कटौती घोषित की गई है।
1: बिल्कुल। और स्थानीय खबर में एक खबर और हमारे पास है। प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़ी करीब 3,000 खदानें दोबारा शुरू होने जा रही है। खान विभाग ने इसके लिए तय समय सीमा जारी कर दी है। फील्ड स्तर पर लंबित एग्रीमेंट 1 माह में पूरे किए जाएंगे, जबकि पर्यावरण अनुमति प्राप्त खदानों में 15 दिन से 1 माह के भीतर खनन कार्य शुरू हो जाएगा। इसका सीधा लाभ उदयपुर जिले को मिलेगा, जिसमें इसके शुरू होने से जिले को सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए की रॉयल्टी और अन्य मदों से आय होगी और रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ में उदयपुर में भी खेल और मनोरंजन का सिलसिला जारी है। टूरिज्म कप 2026 संपन्न हुआ है। उदयपुर में आयोजित इस प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हैंडीक्राफ्ट उदयपुर ने जीत लिया। हैंडीक्राफ्ट उदयपुर टीम बनी चैंपियन इसमें, और उन्होंने हैंडीक्राफ्ट मेवाड़ को 20 रनों से इसमें हराया था।
1: साथ ही CBSE कक्षा 12वीं के परिणाम कल घोषित हो चुके, जिसमें उदयपुर के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसमें बेटियों ने काफ़ी बाजी मारी है।
0: बिल्कुल। और पक्षियों की रखरखाव के लिए एक पहल की गई है, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए सज्जनगढ़ रोड पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पक्षियों और जानवरों के लिए पानी के प्याऊ की व्यवस्था शुरू की है। साथ ही साथ अब हमें इस सप्ताह देखने को मिला है प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले में फेरबदल, जो कि उदयपुर में कई सारे अधिकारियों के तबादले हुए हैं, और मनसुख राम डामोर की वापसी हुई है, उन्हें बड़गांव का नया SDM बनाया गया है।

0: कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर
1: बिल्कुल
0: एक साथ। डिम्पी इको टॉक में आज हम बात करने वाले हैं कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उपाय के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है।
1: बिल्कुल,
0: ये जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल जलाने से, बिजली इस्तेमाल करने से, फैक्ट्री उत्पादन या हवाई यात्रा और कुछ खाद्य उत्पादन से निकलती है, इनसे हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों से वातावरण में ये निकलती हैं, तो यही वो गैसें हैं जो कार्बन फुटप्रिंट होती है।
1: बिल्कुल, देखिए किसी भी एक व्यक्ति या फिर आप कह लीजिए कि कोई संस्था हो गई या किसी भी गतिविधि के कारण पर्यावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें यानी कि विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की हम बात करें तो इसकी जो कुल मात्रा हमारे पर्यावरण में हम छोड़ रहे हैं इस मात्रा को हम कार्बन फुटप्रिंट कह सकते हैं और इसको कम करना अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आपको बताएं कि आप यदि हमारे जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम घर में या किसी भी दफ्तर में 100 यूनिट बिजली भी खर्च करते हैं तो उससे 100 यूनिट से 82 किलोग्राम तक का कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ रहे हैं, ये मानिए। और एक पेड़ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि सोखने का काम करता है तो एक पेड़ पूरे एक वर्ष में केवल 22 किलोग्राम कार्बन ही सोखता है। इसका अर्थ ये है कि हम जो 82 किलोग्राम छोड़ रहे हैं उसमें से केवल 22 किलोग्राम कार्बन ही एक पेड़ सोखेगा। और यदि आप पूरे उस साल में केवल उस 100 यूनिट का भी खर्चा करेंगे तो उसमें से वो 82 किलोग्राम को छोड़ने का अर्थ ये है कि कुल 4 पेड़ लगेंगे उस पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए पूरे एक वर्ष में। इसका अर्थ ये है कि हम छोटी छोटी गतिविधियों में यदि हमारा ध्यान रखेंगे कि हम कार्बन को पर्यावरण में ना छोड़ें तब जाके हम उसका सही रूप में बचाव कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, तो इसके लिए बिजली को हमें बचाना है, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना और उपयोग न होने पर चार्जर लाइट या और भी जो उपकरण हम यूज़ में लेते हैं उन्हें बंद करना है। साथ ही बिजली की हम बात करें तो एसी का टेम्परेचर हमें बहुत कम न रखकर लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बेहतर माना जाता है, ये हम रख सकते हैं।
1: और इसके साथ साथ में यहाँ ये बिजली की बात हुई तो हम देखते हैं कि हम ट्रैवल यानी कि सफ़र करने का जो तरीका है उसमें हम परिवर्तन करें तो इको फ्रेंडली ट्रैवल हम कर सकते हैं जिसमें अपनी पर्सनल कार या बाइक के बजाय बस से ट्रैवल करें, ट्रेन से ट्रैवल करें जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आता है। और इसी के साथ साथ में पैदल चलने की आदत जो जैसे छूटती जा रही है हम उसका भी ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा लेकिन साथ साथ में पर्यावरण का भी हम रखरखाव कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, और वाहन की नियमित सर्विसेज और सही टायर प्रेशर भी ईंधन को बचाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये भी हमें करना, और साथ ही अगर हम

0: हम रसोई घर से बात करें तो भोजन की बर्बादी से हमें बचना है, क्योंकि स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ भी हमें खरीदने हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट से भी हमें बचना है।
1: और आपने अभी गाड़ियों की सर्विसिंग की बात की, तो उससे मुझे याद आया कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का
0: बिल्कुल
1: जो ज़माना चल पड़ा है, तो हम उस पर प्राथमिकता देंगे, तो हमारा ये डीजल है, पेट्रोल है,
0: जी
1: इनकी खपत भी कम होगी उसके साथ साथ में। और भोजन में स्थानीय उत्पाद पर विशेषता इसलिए दी गई है क्योंकि हम बाहर से अगर कोई सामान लेकर आते हैं, आजकल बहुत चलन है ये बाहरी फ्रूट्स का, बाहरी सब्जियों का, और ये अगर हमारे यहाँ पर स्थानीय रूप में नहीं उगते हैं तो इनको बाहर से लाने के लिए भी ईंधन का प्रयोग होता है, और इनको स्टोरेज करने के लिए भी इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ रहा है।
0: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का हमें पालन करना है। घर के जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाना भी इसको कम करने का एक उपाय है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने, और साथ ही साथ देखिए कि केवल ये कुछ उपाय नहीं हो सकते कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, ढेर सारे उपाय हम देखें तो हमारी आम दैनिक दिनचर्या में हम लोग बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम कई बार प्रिंटर से प्रिंटआउट निकालते हैं तो एक कागज़ पे अगर कुछ गलत निकल गया तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम उसी कागज़ को अगले उसका जो पीछे वाला भाग है उस पे नया प्रिंटआउट निकाल कर देख लें यदि आवश्यक नहीं है तो, और उसको रफ पेपर में काम में ले लें, ताकि हमारे जो पेड़ हैं उनसे ही तो कागज़ बनते हैं, तो उस पे
0: जी
1: रक्षा होगी। साथ साथ हम अपने मोबाइल को और हमारे कंप्यूटर्स को भी नियमित रूप से हम उसका रखरखाव यानी कि उसकी अपडेटिंग और फिर उसकी सर्विसिंग करेंगे, हमारे इनबॉक्स को यानी कि ईमेल को हम
0: बिल्कुल
1: लगातार क्लियर करते रहेंगे, तो इसका बोझ भी हमारे इन डिजिटल उपकरणों पर नहीं आएगा और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा।
0: बिल्कुल पेड़ लगाए, हरियाली बढ़ाए, ये छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो कोशिश करें हम इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें।
1: बिल्कुल।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर। मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने

0: के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर की जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉक्टर ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा।

0: कल पांच शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर। मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में इस गीत के साथ।

0: भाई आज ग्रीन और गेटअवे थर्सडे है, तो उसके तहत हम लोग बात करते हैं यात्रा संवाद के बारे में, जिसमें आज पास का जो पर्यटन स्थल हम ले रहे हैं वो है जवाई बांध। ये उदयपुर के आसपास की जो लोकेशन में स्थित है और ऑफबीट और रोमांचक अनुभवों से भरा हुआ ये ट्रिप रहता है। करीब करीब उदयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी रहती है और सड़क मार्ग से तय करने पर 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है यहाँ पहुँचने में। जवाई मुख्य रूप से ग्रेनाइट पहाड़ियों और साथ ही साथ तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल, वन डे टूर के लिए एक उपयुक्त स्थान है यह। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, बांध और लेपर्ड सफारी के लिए जाना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ के मुख्य आकर्षण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जवाई डैम की। यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ सुंदर झील और पक्षी देखने को मिलते हैं, साथ ही क्रोकोडाइल सफारी भी हम यहाँ देख सकते हैं
0: और प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि रबारी जनजाति की जो संस्कृति है ये भी हमें वहाँ पर उस संस्कृति की एक झलक देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ में हम बात करते हैं कि उदयपुर से जाने का मार्ग यदि हम देखें तो उदयपुर से पिंडवाड़ा होते हुए सुमेरपुर होते हुए हम जवाई पहुँच सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों से गुजरने वाला ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत रहता है।
1: बिल्कुल, अरावली की पहाड़ियों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से होकर गुजरता है, इसलिए रोड ट्रिप के लिए भी ये काफ़ी लोकप्रिय और बस की सुविधा हमें सादड़ी और फालना तक मिल सकती है। और जवाई जाने के लिए अगर ट्रेन फैसिलिटी की बात करें तो फालना रेलवे स्टेशन और जवाई बांध रेलवे स्टेशन परफेक्ट रहेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखिए कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात की है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करने की बात की है, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम बस और ट्रेन का उपयोग करें तो भी हम जवाई तक पहुँच सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताएं कि सफारी का जो समय रहता है यानी कि लेपर्ड सफारी, तेंदुओं की सफारी, तो इसमें दिन में 2 बार संचालित की जाती है ये सफारी, जिसमें अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं एक जीप में। सुबह 5:30 से 8:30 का समय रहता है, गर्मियों में तेंदुए देखने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यानी कि सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारों के साथ में सफारी की जाती है।
1: बिल्कुल, लेपर्ड सफारी, इसके बिना तो ये ट्रिप ही अधूरे, या यूं कहें कि हम लेपर्ड सफारी नहीं करी तो कुछ भी नहीं किया। जवाई में चट्टानों और पहाड़ों के बीच लेपर्ड सफारी काफ़ी फेमस है और उस सफारी में लेपर्ड देखने से ज़्यादा मज़ा उस सफारी का है जो दुर्गम रास्तों और चट्टानों पर होती है।
0: बिल्कुल, और यदि हम उदयपुर से निकलने की बात करेंगे तो उदयपुर से हम सुबह सुबह निकल सकते हैं इस ट्रिप के लिए। दोपहर तक हम जवाई पहुंच जाएंगे और वहां पर हम कहीं पर भी स्टे करने के बाद में शाम को जवाई बांध और मगरमच्छ देखें, सनसेट का आनंद लें और शाम की आप सफारी भी कर सकते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भी आप लेपर्ड सफारी का आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ में आप फिर से वहां से दोपहर तक चेकआउट करके शाम तक उदयपुर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल, और यहां पर जाने का सही समय लगभग अक्टूबर से मार्च का ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लास्ट में हमारे श्रोताओं को यही कहेंगे, एक बार अपनी लाइफ में जवाई ट्रिप जरूर करें।
0: बिल्कुल।

0: डिम्पी, आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कार्य संस्कृति को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां काम मैनुअल और समय लेने वाला होता था, वहीं अब एआई के कारण तेज, स्मार्ट और अधिक प्रभावी हो गया है। कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में आज हम बात करेंगे अवेयरनेस सेगमेंट में एआई और बदलती कार्य संस्कृति की।
1: बिल्कुल, और देखिए एआई केवल एक तकनीकी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इसके चलते जो कार्य करने की हमारी पद्धति है, उसकी शैली है, उसकी उत्पादकता है और उसका जो व्यवहार है वो पूरा पूरा बदल चुका है। और एक तरीके से हम बात करें कि क्रांतिकारी बदलाव के रूप में ये देखा जा रहा है, क्योंकि आप अब देखते हैं कि हम कई बार प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर कोई हमें आंकड़े भी लिखने होते हैं या फिर हमें किसी तरीके की कोई टेबल बनानी होती है, तो पहले तो हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके बना लेते थे, लेकिन अब हम सीधा डेटा को एआई पोर्टल्स पर डालते हैं और फिर वहाँ से हम लोग सारी चीज़ें जनरेट कर लेते हैं।
0: एआई टूल्स ने हमारे काम को काफ़ी आसान बना दिया है। डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट बनाना और कस्टमर सर्विस जैसे काम अब बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और कर्मचारी अब ज्यादा क्रिएटिव और रणनीतिक काम पर ध्यान दे पा रहे।
1: बिल्कुल, इसी के बारे में मैं भी बात करने वाली थी कि रूटीन कामों के ऑटोमेशन तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ में कर्मचारी अब कोई

0: नवीन सोच यदि लेकर आना चाहते हैं या फिर किसी जटिल समस्या का निवारण चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी एआई पर हम बहुत धड़ल्ले से सर्च कर लेते हैं और वहाँ से कोई ऐसे बिंदु मिल जाते हैं कि उसको हम अपनी रणनीति में शामिल कर लेते हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल कार्यस्थल को भी बढ़ावा मिला है एआई से। एआई ने रिमोट वर्क को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल टीम और क्लाउड टेक्नोलॉजी से काम कहीं से भी संभव हो पाया। इससे समय और यात्रा दोनों की बचत हो रही है।
0: और इसी के साथ हम देखते हैं कि तकनीकी काम तो एआई संभाल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये साथ में टीम वर्क, जिसको हम लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता हम कह सकते हैं, और साथ साथ बातचीत करने की कला, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इन सब के लिए भी मानवीय गुणों की मांग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सॉफ्ट स्किल की महत्वता बढ़ रही है। इसके चलते एआई के भी बहुत सारे फीचर्स अब लोग यूज़ करने लगे हैं इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए।
1: लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना अब महत्वपूर्ण हो गया। अब कर्मचारियों को एआई, डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी की समझ जरूरी है। पुराने काम कम हो रहे लेकिन नए अवसर भी बन रहे हैं।
0: और इसी के साथ में एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि रिमोट वर्किंग का विस्तार हो रहा है, स्मार्ट लाइफस्टाइल बनती जा रही है। इसके साथ साथ में एआई संचालित क्लाउड टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे टीम्स और कंपनीज प्रयोग कर रही हैं और इसका जोरों शोरों से इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ हम देखते हैं कि अनुमान लगाने का एक जो पहले चलन होता था ना कि अनुमानित तौर पर ये आंकड़े या फिर हम कोई अनुभव के रूप में बात करते थे, आज एआई एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुत अच्छे अच्छे अनुमान और आंकड़े जो हैं वो प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ में कर्मचारी अपने प्रदर्शन यानी प्रस्तुतियों के लिए बाजार का रुझान देखना हो या फिर व्यवहार देखना हो उपभोक्ताओं का, जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में हम रुझान देखना चाहते हैं, एल्गोरिथम के माध्यम से ये बहुत आसानी से हो जाता है।
1: कम समय में अधिक काम संभव हो पा रहा है इसकी वजह से। और लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी, जैसे कुछ नौकरियां खत्म होने का डर बढ़ गया है इससे, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की चिंता भी बढ़ी है और एआई पर अधिक निर्भरता से मानवीय कौशल कम हो चुका है।
0: बिल्कुल, लेकिन देखिए आगामी समय में एआई की तो मांग है ही, लेकिन इसके साथ साथ में ऐसे लोगों की मांग और ज़्यादा होगी जो कि केवल एआई पर निर्भर ना रहें लेकिन एआई का प्रयोग करके जीवन को और सरल और आसान बनाएं और साथ ही साथ जो खुद का कौशल है उस कौशल का प्रयोग करके किस प्रकार से हम एआई का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता रहेगी आगे आने वाले समय में।
1: बिल्कुल, एआई ने कार्य संस्कृति को तेज, लचीला और आधुनिक बना दिया है और साथ ही इसके साथ जो चुनौतियां भी है, लेकिन सही उपयोग और नई स्किल सीखकर हम इसे बेहतर भविष्य बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अब देखते हैं हम समय की ओर, तो समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने की, क्योंकि अगले कुछ कार्यक्रम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हम दोनों को ही आज्ञा दीजिए। आज मैं थी आपके साथ में डिम्पी और
1: आंचल,
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one. Coolest one.
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी, सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम लेकर आए हैं आप सभी का अपना कार्यक्रम, झीलों की नगरी का अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। मैं हूं आपके साथ में डिम्पी और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की सबसे पहले इस गीत के साथ। लेकिन ज़रा सुनते जाइए कि गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है उदयपुर की, झीलों की नगरी में आज सुबह थोड़ी शांत लेकिन थोड़ी तपिश से भरी हुई रही है, क्योंकि सुबह सुबह होते ही थोड़ी गर्मी का रुख बढ़ जाता है। फिलहाल हम रुख करेंगे एक गीत की ओर और फिर बातें और भी होंगी।

भाई मौसम की बात कर रहे हैं तो उदयपुर में 43 डिग्री के पार जो ये तापमान चला गया है, इसके चलते भीषण गर्मी का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव के जो तीखे तेवर हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। मई का महीना अपने पूरे जोश को बनाए हुए है और इसके साथ में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो दोपहर में बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर नहीं निकले। पानी, छाछ, कैरी का पानी, ये सभी आप रेगुलर रूप में लेते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहते हुए आकाशवाणी के साथ में ये 90 वर्षों का जो सफ़र आप तय कर रहे हैं इसको एंजॉय कीजिए।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: शादियों में अलग अलग तरह के जो ट्रेंड चलते आ रहे हैं, इसमें नित नए बदलाव होते भी जाते हैं, और साथ साथ दुल्हा दुल्हन की एंट्री कह लीजिए, वो तो नए नए तरीक़ों से होती ही थी, पर अब कुछ एक नई अनोखी विदाई देखने को मिली। हमारे उदयपुर के पास में झाड़ोल स्थित एक अनोखी शादी में देखने को मिला कि नई नवेली दुल्हन ने विदाई जब ली तो विदाई किसी कार में नहीं, बल्कि चमचमाती हुई JCB मशीन के आगे वाले बकेट में बिठाकर उन्हें घर लाया गया। देखिए, अलग अलग तौर तरीके चलते जाते हैं, लेकिन परंपराएं वही रहती हैं, और बस ध्यान इतना रखना चाहिए कि हम सावधानी बरतें अपने हर एक कदम में, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तेईस जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां।
6: यूं ही नहीं, ये 90 वर्षों का सफर हमने ऐसे ही तय कर लिया। आपका जब साथ ना होता तो फिर ये सफर कैसे तय हो पाता। और आकाशवाणी उदयपुर के श्रोता हमारे इतने हमारे साथ

में जुझारू रूप से सदैव जुड़े रहे हैं कि उनका साथ ही हमें इस सफर पर इतना आगे लेकर आया है। तभी तो रोज कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ बातों के साथ में हम आपके साथ मुखातिब हो पाते हैं। वैसे देखें तो अभी कल ही CBSE की 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसके चलते उदयपुर में समस्त छात्रों के बीच में एक खुशी की लहर है, जहां पर छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि कई सारे छात्रों ने स्कूलों को गौरवान्वित किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसी पढ़ाई से मुझे ये पंक्तियां याद आती हैं कि जीवन केवल कुछ परीक्षाओं का नाम नहीं होता, जीवन निरंतर चल रही इस परीक्षा की संघर्षनुमा कहानी है, जिसके अंदर हर दिन एक तरह से चुनौती है जो हमें लड़कर पार करनी होती है।

FM बैंड 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र FM रेडियो लेक सिटी। और अब समय हो चला है अगले कार्यक्रम का, यानी कि वो भूली दास्तान का। बात करेंगे आज कुछ चुनिंदा गीतों के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गीत के साथ।

ये गीत अभी हम सुन रहे थे फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। लता मंगेशकर की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत। संगीत की बात करते हैं इस गीत में तो प्रिल्यूड यानी कि जो गाने से पहले जो संगीत होता है उस संगीत में वायलिन और मैंडोलिन इन दोनों ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया और उसके बाद में जब इस गाने के अंतरों के बीच में जो संगीत आता है उस संगीत में एकॉर्डियन का प्रयोग किया गया। सुनते हैं अगला गीत और फिर उसके संगीत के बारे में भी बातें।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था इसमें, लता मंगेशकर की सधी हुई आवाज़, फिल्म का नाम दो रास्ते। अब संगीत की बात करते हैं इस गाने में, तो आप देखिए कि इस गाने की शुरुआत में जो प्रीलियुड आता है यानी कि 42 सेकंड का एक पूरा संगीत का चंक रहता है जो इस गाने के शुरुआत में आता है, उसमें हारमोनियम और बैंजो की प्रधानता रही। इसी के साथ साथ में इस गीत में संतूर वादन का प्रयोग किया गया। इस गीत में 1974 तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जितने भी गीत दिए उन सभी में पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा ही संतूर का वादन किया गया, और फिर इस गीत में आगे सोनिक का भी प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अगले और गीतों के संगीत के बारे में। फिलहाल आपको बता देते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा का सफर अभी चल रहा है। इस सुनहरे सफर पर सुनते हैं एक संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

उतना ही खूबसूरत संगीत संगीत एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शैलेंद्र की आवाज़। बॉबी फिल्म का ये गीत, इसमें ईरानी संतूर और एकॉर्डियन का प्रयोग किया गया। संतूर एक बार फिर से शिव कुमार शर्मा जी द्वारा बजाया गया इसके अंदर, और इसमें विशेषता ये थी कि इसमें भारतीय संतूर के साथ साथ में ईरानियन संतूर और एकॉर्डियन और साथ में बोंगो के ड्रम्स का प्रयोग किया गया था इसके संगीत में। सुनते हैं फिलहाल अगला गीत और फिर बातें और भी होंगी।

0: सत्यम शिवम सुंदरम का शीर्षक गीत जो हम अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। राग दरबारी कान्हड़ा पर आधारित ये गीत, जिसके अंदर शुरुआत में बांसुरी का प्रयोग किया गया, उसके बाद में सॉफ्ट नोट्स लेते हुए एक तरह से ये पूरा जो गाना है ये भक्तिमय संगीत तो दिखाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें संतूर का भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था।
1: तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक सिटी पर।

0: कर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुड्ढू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

आरडी बर्मन हमेशा अपने संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। वाद्य यंत्र क्या, वे तो टेबल से और ग्लास से भी संगीत निकालकर अपने गानों में प्रयोग किया करते थे। इसी प्रकार का एक ये गीत जिसके अंदर उन्होंने सितार और वायलिन का एक ऐसा फ्यूजन बनाया कि ये गाना फिर अपने आप में संगीत के रूप में एक मिसाल साबित हो गया। सितार के साथ साथ में वायलिन का खूबसूरत प्रयोग

इस गाने की संगीत की एक अलग पहचान बना। फिल्म का नाम था आ गले लग जा और संगीत की हमने बात कर ही ली, आवाज़ें इसमें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कोरा कागज था ये मन मेरा, फिल्म आराधना से ये गीत था जिसे आवाजें दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, SD बर्मन का संगीत था। इस गीत में भी सितार और वायलिन की जुगलबंदी देखने को मिली। वैसे तो किसी एक गीत में बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन विशेषकर कुछ ऐसे वाद्य होते हैं जो कि हर गाने को अपने आप में अलग बनाते हैं, या फिर उन वाद्य यंत्रों का प्रयोग आमतौर पर नहीं होता, पर उस गीत में उसने कुछ अलग सा उस वाद्य यंत्र ने दिया होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से वो गाना अपने आप में अलग बन जाता है। ऐसे ही गीतों की चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, और अगला गीत भी आइए सुनते हैं क्या है, फिर इसके बारे में बात करेंगे।

पत्ता पत्ता बूटा बूटा। एक नज़र फिल्म का ये गीत, रफ़ी और लता की आवाज़ें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गीत में हमने देखा हारमोनियम, साथ ही साथ तबला और ढोलक का प्रयोग किया गया। तबला तो वैसे हर गाने में होता ही है, एकॉर्डियन का प्रयोग भी इस गीत में हुआ और उसके साथ साथ में वायलिन का प्रयोग किया गया। वायलिन की हम जहाँ तक बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल जी वायलिन वादक रहे हैं और वे अक्सर अपने गीतों में वायलिन का वादन भी किया करते थे। जैसे अब जो ये गीत हम सुनने वाले हैं, फिल्म शोर का ये गीत है, मुकेश और लता की आवाज़, संगीत एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत में भी शुरुआत में आप देखेंगे वायलिन का प्रयोग है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो भूली दास्तान। FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी सुबह के 11 बजे हैं और अब समय हो चला है तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। मैं हूं आपके साथ में डिम्पी और इस कार्यक्रम को आज हम केंद्रित कर रहे हैं कुछ विशेष गीतों पर। और वो गीत कौन से होने वाले हैं ये तो आपको कार्यक्रम के साथ साथ पता चलेगा ही, लेकिन हम बात करते हैं वैश्विक संकट से उभरते हुए अभी इस दौर की, जिसमें भारत ने कुछ विशेष प्रावधान हमारे सम्मुख रखे हैं। यदि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहें तो राष्ट्र को प्रथम रखते हुए जहाँ तक संभव हो सके हमारे देश में ही रहे। आगे कुछ और भी अपील है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, उन्हीं से संबंधित गीत होंगे, लेकिन गाने तो हमारे होंगे पर व्हाट्सएप आपके होंगे। तो जल्दी से हमें इन गानों के साथ में व्हाट्सएप कर दीजिए, इन गानों का नाम और फिर अपने नाम के साथ। आपको नंबर पता ही है 9462697568 9462697568। पहला गीत इस पर्टिकुलर कार्यक्रम का आपके लिए आ रहा है, जिसमें हमने ये बात की है कि हम अगले एक साल तक कहीं बाहर आने जाने के बजाय भारत देश में ही भ्रमण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा देश है भी कुछ ऐसा।

तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्र प्रथम की अपीलों के बारे में, और सबसे पहले मैसेज इस गाने के लिए पसंद करते हुए आया है। ये आया है छत्तीसगढ़ नरगोड़ा सीपत से, जहाँ पर महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, गोस्वामी परिवार से ही लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, ये सभी इस गीत को पसंद कर रहे थे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही हमारे पास मैसेज है। वर्मा परिवार से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा का इसके साथ हमें मैसेज प्राप्त हुआ है इस गीत के लिए, जो कि है पिंगावाला चौक जलंधर से ज्योति मन्नत भ्रात, कमल सहानी और संदीप माकड़, ये सभी माकड़ परिवार से हमें मैसेज कर रहे हैं। और साथ ही देखते हैं वर्मा परिवार से किनका मैसेज है। ये है छत्तीसगढ़ दुला जिला दुर्ग से वर्मा परिवार से बालकरण, अंजनी, ज्योति, राजेंद्र प्रहलाद और सूरज और कुशल, ये सभी हमें मैसेज कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की ओर आते हैं, तो जोधपुर से हमें मैसेज प्राप्त हुआ है चौहान परिवार का। ये है रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। देखते हैं अगले मैसेजेस हमारे पास इस गीत के लिए किनका आया है। हनुमानगढ़ जंक्शन से डागला परिवार से जगमाल सिंह, हैप्पी, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार इस गीत के लिए मैसेज कर रहे हैं। और अब ये देखें बस्तीराम जी की बात।

बड़ी उदयपुर से हमें मैसेज मिला है सिराज हुसैन मोतीवाला को, ये गीत बहुत ही पसंद आया, और आए भी क्यों ना, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, और भारत की जब बात आती है तो वो दुनिया में सबसे बेस्ट कहलाता है हमारे लिए, वी लव आर इंडिया। बात करते हैं अगले मैसेज की, ये है माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश, छत्तीसगढ़ नांदघाट से इनका मैसेज है, और इसी के साथ लगान पंड्रिया से छत्तीसगढ़ से और मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, ये है उत्तम कुमार, रुखमणि, साहिल, भारती, सभी बघेल परिवार से हमें मैसेज कर रहे हैं। और जवाहर नगर उदयपुर से मैसेज है बाबू भाई और भारती देवी का, साथ ही मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी और महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से नाचानी परिवार से रमेश, भारती, विनीत और मिथिल, ये सभी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मैसेज हमें मिला है, ये भारत जैसा कोई देश नहीं, ये मैसेज भी लिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, इन्होंने मैसेज किया है रामदेव जी मंदिर उदयपुर से, ये कुमावत परिवार से है मनोज, सुंदर देवी कुमावत, किरण, ललित, अजय, भावना, हेमलता, विनायक, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा और हमारे इनके साथ साथ में सेक्टर 7 के चामुंडा माता मंदिर से शांति देवी कुमावत, मनोज और सुनील, ये सभी कुमावत परिवार से इन्होंने मैसेज भी लिखा, साथ साथ गाने को भी पसंद किया। और देखिए गाने बहुत सारे हैं क्योंकि हमें हर अपील पर हम एक गीत को सम्मिलित करेंगे, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं, तो आपके मैसेज अगले गीत के लिए बचाइए। फिलहाल एक अंतिम मैसेज इस गीत के लिए जो आया है उसको सम्मिलित करते हैं, उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा एवं नाहर सिंह वारी, और साथ ही भावना और नितिन रावत, इनका मैसेज प्राप्त हुआ है। अगले गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करें कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो गाढ़ी कमाई हम कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में लगा देते हैं। आप जानते हैं कि भारी मात्रा में सोना आयात जब किया जाता है तो इसकी हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, साथ ही साथ सोना जब हम लेते हैं तो लाकर लॉकर में रख देते हैं तो वो एक तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि इन्वेस्टमेंट यदि किया जाए तो फिर वो किसी ऐसी चीज़ में किया जाए जो निरंतर प्रगति करे और देश पर भी प्रभाव ना डाले। तो अगले एक साल तक सोने को खरीदने की अपील जो है वो कम की गई है, क्योंकि आप देखिए कि अभी लागत भी बहुत बड़ी हुई है, यदि हम इसे कम खरीदेंगे तो फिर अपने आप शायद इसकी लागत भी गिरती चली जाएगी, साथ ही साथ देश पर भी प्रभाव कम डलेगा।

तो ये मैसेज है हमारे पास में सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से चौहान परिवार से रमेश चंद्र जय नारायण तरुण और प्रतीक इस गीत के लिए मैसेज कर रहे हैं हमें। और अगला मैसेज ये देखते हैं, मैसेज का तांता लगा हुआ है, प्रयास करेंगे कि आप सभी के मैसेज इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर पाएं। और ये मैसेज है रोहांसी छत्तीसगढ़ से साहू परिवार से मुकेश नंदनी मनीष मयंक जानकी साहू का। और इनके साथ साथ में ये पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से वर्मा परिवार से दीपेश पूनम ज्योति शिवांश और ये सभी वर्मा परिवार से मैसेज कर रहे थे। और अब देखते हैं मॉडल टाउन करनाल से मैसेज है सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा ईशप्रीत शर्मा हरिपाल कौर और साथ साथ माया कुमारी जी का। अगला मैसेज आइए देखते हैं, ये है भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज है छिपा परिवार से धर्मेंद्र कपिल ईशान और पूजा परिहार का। अगला मैसेज देखते हैं सजन नगर उदयपुर से मैसेज आया है उस्मान हीना इरफान गुड़िया निदा अली और दानिश आमिल का। इसके साथ साथ सवीना सेक्टर 12 उदयपुर से इंतखाब रेहाना सामिया खुशी नजीमा ये मैसेज कर रहे हैं हमें। और अमरनगर ब्लॉक बी से मैसेज है एजाज का राजिया का और फैज़ा अम्मार का। इसके साथ मल्ला तलाई उदयपुर से मैसेज आया है हसन परवीन इरशाद जीनत और राफिया का। अगला मैसेज देखते हैं, यह है करजाली हाउस से मैसेज है इनका हरीश सोनी पवन चंद्र प्रकाश त्रिलोक और ये सभी सोनी परिवार से मैसेज कर रहे हैं, इन्हें ये गीत पसंद आया। बोहरवाड़ी से आशिक आलम शब्बीर टेलर ताहिर लड्डू और सिराज हबीब का मैसेज। और ये है बोहरवाड़ी से हमें फिर से एक मैसेज प्राप्त हुआ है शकीफुल सैफी सादरी सैफी साइकिल हुसैनी आर ओ और

0: और दीपक प्रजापत, हातिम जैनी, शौकत तामसी, इलियास टेलर और दाऊआ का मैसेज हमारे पास प्राप्त हुआ है। सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, डिकेस्ट्रो परिवार से रोजी, पर्ल, विलिस और जोन, ये सभी हमें मैसेज कर रहे हैं इस गीत के लिए। साथ ही देखते हैं बाड़मेर से पंवार परिवार से बबलेश, डैनी, मनीष का मैसेज, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल का मैसेज और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज आया है। और ये मैसेज अब आया है, ये है कलड़वास सांची ग्रुप से तुलसीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा और भुवनेश का। अगला मैसेज देखते हैं, ये है मीरा कॉलेज उदयपुर से और ये सालवी परिवार से रोशनलाल, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैत्विक और पूरा सालवी परिवार इस गीत को पसंद कर रहा था। ये मैसेज आइए देखते हैं, सूरजपोल रेगर कॉलोनी से बाबूलाल, दिनेश टाक, मुकेश टाक, पुष्कर टाक का मैसेज। साथ ही जिंगर परिवार से भूत महल से मैसेज आया है, दिनेश, मोहित और इंदु जिंगर का। अगला मैसेज देखते हैं, जोधपुर से है सोनी परिवार से नरपत वैशाली और भाटी परिवार से नरेंद्र और वीणा का मैसेज। ये मैसेज है बजाज नगर उदयपुर से मिस्टर एंड मिस 55, ये मैसेज कर रहे हैं हमें अशोक आनंद और मीनू नैनानी, प्रभात नगर हिरणमगरी सेक्टर 5 से। आइए देखते हैं अगला मैसेज इसी क्रम में, इस गीत के लिए हमारे पास किनका आया है। ये है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित, आयुष और नंदिनी का। आपके जो मैसेजेस होते हैं उसमें कई बार बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बनी हुई होती हैं कि नाम पढ़ने में ज़रा कठिनाई होती है, तो केवल आप नाम भेजेंगे और यदि कोई संदेश उस गीत से संबंधित है वो भेजेंगे तो आसानी होगी। मुकेश वैद सिसारमा उदयपुर से इनका मैसेज है, मनन, वेद, ईशानी, शीला और समस्त चौहान परिवार, वेद परिवार इस गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज कर रहा था। ये देखते हैं अगला मैसेज किनका है। ये है दिवाली से श्री कृष्ण, आर्ट से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिय कुमावत और रजत कुमावत का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सम्मिलित करते हैं। उसके पहले ज़रा एक छोटी सी बात, हमारे यहाँ पर प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से हम तो रोज दो चार होते ही हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम की भावना कहती है कि समाधान की शुरुआत हम ही से होती है। जब हम अपनी पर्सनल गाड़ी को छोड़कर सिटी बस, ट्रेन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे तो न केवल इस देश का कीमती ईंधन बचाएंगे, साथ ही साथ हम अपने शहर को साफ और स्वच्छ भी रखेंगे और साथ ही साथ हम इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट भी कम करेंगे, राष्ट्रहित में अपना योगदान भी देंगे।
1: बाजू।

देखते हैं इस गीत के लिए हमारे पास में किन का मैसेज है। ये है सहेली रेडियो श्रोता संघ से मैसेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ खंडवा मध्य प्रदेश से हमें मैसेज प्राप्त हुआ है डावर परिवार से, शालिया, हलीमा, जिक्रा और आयशा खत्री का। इनके साथ में घूंघट रेडियो श्रोता संघ से भी हमारे पास मैसेज आया है। साथ ही साथ ज़िला धार धर्मपुरी से खत्री परिवार से मूसा, ईशा और जाकिर का। अगला मैसेज देखते हैं, ये है कमल, सोनिया, हरीश, मोनिका, भाविक, मीनाक्षी, आयुष, मंथन और प्रीशा, हर्षल, रोनित जैन, तुलसी नगर भुआणा उदयपुर से इनका मैसेज प्राप्त हुआ। खारोल कॉलोनी उदयपुर से अट्टारी परिवार से सलमा, खौजिमा और सुग्रा अट्टारी का मैसेज। साथ ही साथ संजीदा, तबस्सुम और अलीशा कलकत्ता वाला, इन्होंने हमें मैसेज किया है। आगे देखते हैं, ये मैसेज हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से प्राप्त हुआ है। मस्कीन परिवार से तुलसी, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य, मेघा, ये सभी मैसेज कर रहे हैं। साथ में चंडीगढ़ से राहुल खुराना और खुराना परिवार से ही रचिता, केशु, रिधान का मैसेज मिला। और देखिए, आकाशवाणी को आप कहीं पर भी किसी भी जगह से किसी भी स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। और ऐसे ही कुवैत से बैठे हुए हमारे जो लिसनर हैं ये सुन रहे हैं, ताहिर अली और उनके पूरे परिवार ने इस गीत को सराहा है। अगले मैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं, अमल का कांटा उदयपुर से, लक्ष्मी मार्ग से राहुल, योगेश, योगी और विक्रम शर्मा, ये सभी शर्मा परिवार से मैसेज हमें कर रहे थे। और देखिए अगला मैसेज, रामद्वारा चौक धोली बावड़ी से मैसेज प्राप्त हुआ है। विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वसीता और भवर वसीता, गौतम वसीता और राहुल अगरबत्ती का मैसेज मिला। और ये है उदयपुर धान मंडी से परमानंद कुमावत, कुमावत परिवार से ही मंजू, विकास, मोनिका, लक्ष्य और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ से हमें सभी सदस्यों का मैसेज प्राप्त हुआ है। बेंगलोर से निखलेश, दीपिका और रिधान कुमावत, और ये है बेंगलोर से ही कुमावत परिवार से वर्षा, सुरेंद्र और लावण्या का मैसेज। अब देखते हैं, ये है मादड़ी उदयपुर से हमें मैसेज मिला, हीरालाल चौधरी, पार्वती, गजेंद्र और निर्मला चौधरी, ये सभी चौधरी परिवार से मैसेज कर रहे हैं। और गोकुल विलेज से उदयपुर से मैसेज मिला है सुशील, अनीता त्रिवेदी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब ये अगला मैसेज किनका है। ये है जगदीश चौक से उमावारी और

0: साक्षी वारिका, आयुर्वेदिक चौराहा उदयपुर से हमें मैसेज मिला है अशोक चौहान, मंजू और उषा चौहान का। अगले मैसेज में हम देख रहे हैं ये किनका मैसेज आया है, सालार पहलगाम कश्मीर से हमारे श्रोता मैसेज कर रहे हैं, पीरजादा मिराज उद्दीन और नजम उद्दीन और कैसर उद्दीन, आप सभी हमारे इस गीत को भी पसंद कर रहे हैं, कार्यक्रम को भी। तराने हमारे व्हाट्सएप आपके कार्यक्रम चल रहा है, इसमें अगला मैसेज देखते हैं, ये है धन्वंतरी नगर मध्य प्रदेश से, अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति, ऋतु, कृषिव, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह, ये सभी सिंह परिवार से हमें मैसेज कर रहे हैं। और उदयपुर राजस्थान से मैसेज है लाल सिंह राठौड़ का, ठिकाना खरका भाणावत भागत सलुम्बर से। देखते हैं अगले मैसेज को, और ये मैसेज हमें मिला है बुलंदशहर से, जिसमें अब्बासी परिवार से मोहम्मद सईद, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज और फरदीन सुहान का।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: व्हाट्सएप बहुत सारे आए हैं, तो अगले मैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये मैसेज कहाँ से है। ये तेलीवाला उत्तराखंड से हमें मैसेज मिला है, सलमानी परिवार से निसार, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू का। और ये मैसेज देखते हैं ये किन का है, ये साथ में एक संदेश भी लिख रहे हैं, ये है जवाहरनगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। और ये लिखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए आयात पर नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है, कार्यक्रम विषय के अनुरूप चल रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, और सही बात भी है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था में हम अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। अगला मैसेज देखते हैं, डेलीगेट उदयपुर से आया है, सलमान अहमद टेलर, भरत भाई टेलर और छतरीवाला चौक से ये मैसेज कर रहे हैं हमें। मोती चौटा करजाली हाउस से दीपक कुमावत, हरीश जी सोनी का मैसेज मिला। और अगला मैसेज है हमारे पास, ये दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का। अगला मैसेज सेक्टर 9 उदयपुर से, हरीश जिंगर, मंजू, जय, माधवी, छुटकी, किट्टू, ये सभी जिंगर परिवार से इस गीत के लिए हमें मैसेज कर रहे हैं। और नसीराबाद से महेंद्र डाबी और ममता डाबी, हीना और गुना ने मैसेज किया। और कुम्हारवाड़ा उदयपुर से ललित कुमार प्रजापत, अशोक कुमार, नामदेव और जाकिर हुसैन का मैसेज आया। मनीष टेलर और बाबूलाल धाबाई सीमेंट फैक्ट्री से हमें इस गीत के लिए मैसेज कर रहे हैं, उदयपुर से ही। उदयपुर से ही हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, इनाया टेलर और अक्सा इकरा का, मुस्तफ़ा कॉलोनी से ये मैसेज कर रहे हैं। और अब देखते हैं अगले गीत की बात करें, तो देखिए हम बात करते हैं खाद्य तेल के बारे में, यानी कि हम जो खाने में तेल का प्रयोग करते हैं वो खाने में पूरी तरह से घुलता नहीं, लेकिन हमारी नाड़ियों में ज़रूर जम जाता है। इसी के चलते हम देखते हैं कि आजकल हार्ट के केसेस भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो उस तेल को पचाने के लिए आपको कसरत तो करनी ही है, लेकिन हम प्रयास यही करें कि हम खाद्य तेल को जितना हो सके अपने खाने में कम सम्मिलित करें। उससे दोनों फायदे होंगे, हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में हमारे राष्ट्र में खाद्य तेल के उपयोग के लिए, उसके आयात के लिए हमें थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा। और इसके चलते हम लोग न केवल अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे, बल्कि हमारे राष्ट्र की भी सेवा कर पाएंगे।

भाई भेलपूड़ी के साथ साथ में ज़रूर से आपको कचौरी, समोसे और मिर्ची बड़े की भी याद आई ही होगी। मेवाड़ में तो हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। गर्मी भी बहुत है और साथ साथ राष्ट्र प्रथम का भी हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम इस राष्ट्र के सपूत हैं। अगले मैसेज की ओर आगे बढ़ें तो देखते हैं, घंटाघर उदयपुर से हमें सोनी परिवार से हरीश, मांगेलाल, दीपक कुमावत, नरेश पाहुजा, शमिल भाई, नाहर सिंह, लाल सिंह जी सोनी और इन सभी ने मैसेज हमें किया है। मैसेजेस का जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है, तो हम प्रयास यही करेंगे कि अब सारे मैसेजेस को हमें सम्मिलित करना ही है। तो देखते हैं ये अगला मैसेज किनका है। ये अब्दुल गफ़ार डावर, अब्दुल हक, ज़ियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, ये सभी हमें मैसेज कर रहे हैं खंडवा से। और अगले मैसेज में हम देखते हैं तो ये मैसेज हमें मिला है हाथीपोल उदयपुर से, तरुणा झमक

पूर्बिया, सोहन देवी पूर्बिया पूरव और लक्ष्मी लक्षराज पूर्बिया का। अगला मैसेज मिला है हमें, ये है मैसेज जलंधर से। हमें ये मैसेज पहले भी प्राप्त हुआ है। और अगले मैसेज पे आगे बढ़ें तो MB कॉलेज कुम्हारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्पा रानी पूर्बिया और मोती चौटा से करजाली हाउस से हमें मैसेज मिला, माधवलाल सिल्ली घर से। ये गीत उन्हें बहुत पसंद आया। कुम्हारों का भट्टा से प्रजापति जॉनी भाई कुल्लड़ वाले, इन्होंने इस गीत को सराहा है। अगला मैसेज ये हमें प्राप्त हुआ है, देखते हैं ये मैसेज किन का है। ये गीत बहुत पसंद कर रहे हैं, महेश्वरी मोहल्ला मावली से मैसेज मिला है। गणपत विजयवर्गीय, भगवती पुष्पा बेन, फेना गर्ग, समस्त विजयवर्गीय परिवार इस गीत को पसंद कर रहे थे। सुशील अनिता त्रिवेदी, ये मैसेज हमें मिल चुका है। अगला मैसेज देखते हैं ये किन का है। जलालाबाद वेस्ट से गगनेजा परिवार से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, इन्होंने मैसेज किया है। और ये मैसेज अब देखते हैं और किन का है। ये पंजाब से हमारे पास मैसेज आया है, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा परिवार से इन सभी का मैसेज मिला है। और साथ में अब देखते हैं, सुंदरवास उदयपुर से रोशनलाल प्रजापति और कमला, धीरेंद्र, यशवंत, लोकेश, नरेश, हिमांशु, विपुल, शिखर, हितार्थ और मिष्ठी, रीत, कोविदा, जीविता, जिनीशा और कार्तिकी प्रजापति, ये सभी प्रजापति परिवार से मैसेज कर रहे थे। डूंगरपुर से मैसेज मिला है, भारत जायसवाल, सोनिया गरासिया का मैसेज। और अगला मैसेज है कुमावतपुरा से संगीता राजकुमार और तुषार किरण कुमावत और सभी कुमावत परिवार। साथ ही ये मैसेज मिला है हमें वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज। और ये साथ में मैसेज है सुंदरवास से डालचंद सब्जी वाले, इन्होंने मैसेज किया है हमें। ये अभी इस गीत को और हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और अब देखते हैं अगला मैसेज, फाजिल्का पंजाब से खेड़ा परिवार से भूषण, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवांशी, वाणी, RB खेड़ा और जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार इस गीत के लिए मैसेज कर रहे थे। गणेश नगर से हमें मैसेज मिला है महावीर जैन चित्तौड़ा का। और ये मैसेज आया है पनिहारी वादियों की घाटी, दीपक रावत, किरण रावत और नक्स रावत, हरीश और मीना रावत, इनका मैसेज मिला हमें। और अब अगला मैसेज है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, भाटिया परिवार से एंजल, सोनू और पप्पी का मैसेज। जिंगर परिवार से अजय, प्रिंस, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर से, चेतक सर्कल से मुकेश और रेणु जिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से चेतक। साथ ही देखते हैं अगला मैसेज, अब ये किनका है। ये रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से मैसेज है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता, खुशी का। अगला मैसेज देखा जाए तो ये है अशोकनगर उदयपुर से तनिष्क तंबोली और वैभव सोनी, भावना तंबोली का मैसेज। और इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे अब मैसेज मिला है हमें ठिकाना खरगा भानावत भागल सलुम्बर मेवाड़ से, ये है लाल सिंह राठौड़ का। और मुकेश बडारिया और लाला राम जाटोलिया, दिलीप टेलर, सेंट्रल एरिया उदयपुर से इनका मैसेज आया है। वेणी राम, दाखीबाई, सावरी, ममता, संजना, ललित कुमावत, ये ओल्ड RTO ऑफिस उदयपुर से इनका मैसेज मिला है। सेक्टर 9 से हमारे पास ये मैसेज आया है जिंगर परिवार से, और इन सभी का नाम हम पहले ले चुके हैं। और उदयपुर हिरण मगरी सेक्टर 5 से शांति नगर से घनश्याम लाल बटारिया और नानी बटारिया, नंदिनी, पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया, इन सभी का मैसेज। साथ में अगला मैसेज आइए जल्दी से हम देखते हैं क्योंकि समय भी आगे भाग रहा है। तो विजय व्यास, उषा, जयेश, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर, यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर से इनका मैसेज है, सभी व्यास परिवार से। साथ ही ये है फतेहपुरा खारोल कॉलोनी से नीरज, ध्रुवेश, प्रेम शंकर और दिव्यांश का। और इसके बाद हमें मैसेज मिला है

ये है हिसार से, डूडी परिवार से राजकुमार प्रमोद और पुष्पेंद्र का। और अब आइए देखते हैं कि ये अगला मैसेज हमारे पास किन का मिला है। ये है कांगड़ा परिवार से गोलू, सागर, सीताराम, अंशिका और तमन्ना का। ये है गांव खरकड़ा चौबीसी से। साथ ही उदयपुर हिरणमगरी से हमें मैसेज मिला है कुमावत परिवार से नीलम और विनोद का। साथ में जया और किंकू भी हैं इनके। और सतीश अनेजा का मैसेज मिला है, साथ में बिमला अनेजा चंडीगढ़ से ये मैसेज कर रहे हैं। अशोक आनंद और मीनू नैनानी प्रभात नगर हिरणमगरी सेक्टर 5 से इनका मैसेज। चांदपोल से मैसेज आया है विंडर की हवेली गोपाल कुमावत, कैलाश, सरोज, गौरव, भावी, लावी, इन सभी ने इस गीत को सराहा है। चमनपुरा से जहारा अहमद और फातिमा और आसिफ पटवा का मैसेज हमें मिला है। संतोष खतूरिया का मैसेज आया है, ये है दूध तलाई उदयपुर से। शक्तिनगर से उदयपुर से संतोष कामिया, विकास, भानु और हिताक्ष खतूरिया से का मैसेज मिला है। और अब ये अगला मैसेज है खांजी पीर उदयपुर से, जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदा इरम खलीम का मैसेज और साथ ही राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्यों का मैसेज। और इनके साथ में प्रताप नगर से नरेश दवे, रंजना दवे और अंशुल दवे का मैसेज है। अगला मैसेज हिरण मगरी उदयपुर से डीएस भट्ट, वरिष्ठ नागरिक, लिसनर्स क्लब के सभी सदस्य इनके साथ साथ में हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये देखते हैं इसके बाद शायद दो मैसेज और हैं इस गीत के लिए। संबलपुर कांकेड़, फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव परिवार से ये सभी मैसेज कर रहे हैं। अगला ये मैसेज हमें मिल रहा है, ये आइए देखते हैं ये मैसेज किनका है। ये मैसेज है कमल सोहालका का और इनके साथ साथ में कौशल्या सोहालका का मैसेज आया है। साथ ही हम देखते हैं मैसेज हमें चांदपोल से मोहन कुमावत, नरोत्तम गौड़ का मैसेज मिला है। और ये श्वेता सोहालका और हितेश सोहालका का मैसेज हमें प्राप्त हुआ इस गीत के लिए। और अब लीजिए सुनते हैं अगला गीत। अगले गीत की हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले ज़रा हम राष्ट्र प्रथम की इस थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज उन सभी गीतों के बारे में जो कि हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की हिदायत भी देते हैं, साथ ही राष्ट्र प्रथम की ये जो अपील चल रही है। तो जब हम सुबह उठकर रेडियो सुनते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर सभी जो वस्तुएं हैं वो यदि यहीं की बनी हुई होंगी तो वो हमारे राष्ट्र को ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि विदेशी ब्रांड को हम कम अपनाएं और स्वदेशी को ज़्यादा महत्व दें।

0: सोच, ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला,
1: भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यही मोटिव हमारा भी होना चाहिए और यदि यही लक्ष्य हुआ तो अवश्य ही हम हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ऊंचे पायदान पर लेकर जाएंगे। अगले मैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं। खेरादीवाड़ा रंगीला भैरू चौक से कुमावत परिवार से लाल सिंह, मीना, मोहित और मीनाक्षी का मैसेज मिला। हिरण मगरी सेक्टर 5 उदयपुर से कुमावत परिवार से शशांक, कार्तिक, पलू और यवि का मैसेज, और साथ ही किंजल, हर्षिता और शौर्य गजेंद्र, ये सभी कुमावत परिवार से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये मैसेज है सेक्टर 5 से ही, ये कुमावत परिवार से विनोद, नीलम, गजेंद्र, जया, कुशल और कोमल कुमावत का। अगला मैसेज हमें मिला है ये संभाजी नगर से संजय, सपना जैन का, उदयपुर से राजकुमार, रेणु जैन का मैसेज मिला, और राय परिवार से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार और हैप्पी का मैसेज है। ये नारायणपुर पट्टी बलिया से मैसेज था, और गाजीपुर से राय परिवार से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल का मैसेज। अगला मैसेज देखते हैं, रामपुरा से नारायण सेन का मैसेज मिला है, और उदयपुर बिल्लू राणा कॉलोनी से सोनू और पिंकी का मैसेज मिला हमें। साथ ही पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग का मैसेज मिला। साथ ही देखते हैं, भोपालपुरा उदयपुर से सविता शर्मा, पायल, पूनम, पुनीत, सिद्धेश, अदिति, सृष्टि, विनीता, मंजू और सुनीता, इन सभी का मैसेज मिला है। अगला मैसेज है ये अमरावती से गोंडाने परिवार से सिद्धार्थ, अर्पणा, प्रणय और प्रतिभा का मैसेज। मल्लातलाई से फयाज हुसैन, रसिया और फरीदा बानो, मोहम्मद सैफ और रुबीना का मैसेज मिला है। साथ ही मालदास स्ट्रीट से सैन परिवार से मंजू, अशोक जी, राधा, किशन, सोनिया, शेखर और चिंकी और निर्मला जी, इन सभी का मैसेज प्राप्त हुआ है। उदयपुर हिरण मगरी सेक्टर 5 से शांति नगर से नानी रेगर, प्रीति अग्र

0: अग्रवाल और नंदा अर्चना तलरेजा का मैसेज मिला है, और ये मैसेज है चांदपोल से मोहनजी कुमावत, नरोत्तम गौड़ का मैसेज ये हमें प्राप्त हो चुका है पहले भी। और अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन उसके पहले एक संदेश।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: श्रोताओं, कोविड के बाद से ये समय आ चला है जब वर्क फ्रॉम होम के जो एक कॉन्सेप्ट को एक पहचान मिली, और ये जो विचार था ये पहले भी था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद में ज़्यादा आया। और अब देखते हैं कि हम बहुत सारी कंपनीज इस तरह का हमें प्रावधान देती है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम हर दिन यदि संभव हो सके तो घर से काम करें, जिससे कि हम सड़क पर गाड़ी नहीं चलेगी, पेट्रोल की बचत होगी, साथ ही ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा, और इसके साथ साथ में यदि बाहर की कोई कंपनी है तो हमें विदेश यात्रा से भी बचना पड़ेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी लाइफ भी बैलेंस होगी। और जहाँ तक बात है हमारे राष्ट्र की मिट्टी की, तो यहाँ पर अधिक पैदावार होती है, लेकिन हम कई बार अधिक पैदावार के चक्कर में कीटनाशक यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसे हमें कम करना है। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे कि फसल अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और राष्ट्र की ये जो उत्पाद है इनको हम बाहर भी भेज सकेंगे। और अंतिम मैसेज इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे पास मिले हैं वो है भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री का, और वारियों की घाटी से गुनगुन का, बाबू बाजार से मीना और साक्षी वारी का। अंतिम मैसेज तराने हमारे व्हाट्सएप आपके कार्यक्रम का, राष्ट्र प्रथम की इस अपील में आप भी अपना योगदान कीजिए और इस राष्ट्र को प्रथम बनाइए।

0: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र FM रेडियो लेक सिटी। और अब समय हो चला है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है।

0: इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है FM रेडियो उलैक सिटी। दोपहर के 12:05 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रमों की श्रृंखला में। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत रोजन जान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, यशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना हम वापस करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ में रविंद्र अवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि

0: आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज़ में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविंद्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी, इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर। की हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं, और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है, भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत तो होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं, मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती हैं, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं, मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नज़र आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत

0: इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया, रिश्तों में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया, मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं, और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे, और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना डॉन पकड़ में नहीं आता। और इससे इबारत इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी, और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं, और लोग उस बात पर उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने मुँह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबा आहा। अरे

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म, अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं, और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है, अरे दीवानों मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफ़र का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट योर पुष्पा, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी, हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ, ये डायलॉग्स सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियाँ होती हैं, ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहाँ से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफ़र इसमें चल रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा। दूसरा है, जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते। और तीसरा है, मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG ख़त्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का ज़रा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा अगर आपकी पसंद

मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा, और इतना सा बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हों जहाँ पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपाए बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफ़र में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं या धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफ़र के साथ सफ़र यानी डबल सफ़र करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफ़र के साथ साथ ट्रेन के सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है यह सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है।

है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी। और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगे, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम करें। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की ये फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो ज़रूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप ज़रा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मर

ते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोल आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो ढोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 ईयर्स मुगे में खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है, मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है तो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और ज़रा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे।

से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माई लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ मैं आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी। तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

0: है।
1: आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाही ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज़ मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज़ वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझे मुझसे एक कविता का वादा है, वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए, ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो निरा अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता

0: प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को

0: विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ YR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: ट्वेल्व ओ क्लॉक फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

किए तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा किए तुम्हें हम बन के दीवाना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दी

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों सहेली।

0: लिए हूँ और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी
0: बिल्कुल
1: वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, तो आज
0: यही
1: भी वजह बताइए।
0: भाई, एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
1: हाँ,
0: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी।
0: और आपको
1: बाकी
0: ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या
1: हाँ,
0: नहीं।
1: तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख
0: जी
1: रही हैं,
0: बिल्कुल।
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
0: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े या
0: जी
1: उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो
0: वो
1: उपयोगी टिप्स
0: बताएंगे।
1: लगकर बता
0: जी
1: देंगे।
0: बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
0: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जा करके देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें,
1: देखो,
0: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किस्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज़ 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है, उसे हम कुछ 2-4 हज़ार, 5-8 हज़ार देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज़ आ सकती है। लेकिन हर चीज़ के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं।
0: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या
1: जी
0: कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और
0: क्या
1: इसके
0: अनुभव
1: साथ
0: है।
1: जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि
0: हाँ
1: उन्होंने जब किस्तों पर कोई चीज़ ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है,
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: जहाँ पर हम KG 1 KG 2 के जब
1: हाँ
0: पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में
1: जी
0: या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते
0: अरे
1: हैं। कुछ
0: बिल्कुल।
1: ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है।
0: जी
1: वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं,
0: हाँ
1: बस अपने शौक
0: हाँ
1: में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
1: भाई
0: है उसके
1: जानकारी
0: बारे में।
1: बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
0: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या

0: नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरीबाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते ना कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली पहली महिला हैं जिन्होंने कागज़ और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने

0: क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन ले।
1: चलिए।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: दी,
1: हाँ? ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: 90.
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
2: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना ज़िंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारे सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो चकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
2: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
3: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, चीची यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

0: तमिलनाडु है भारत की, जो कहते वो ही होगा। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव है भारत के, जो कहते वही होगा।
1: ओए जम के एक जमा दूं

उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, सास सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र

0: हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते,
1: सही बात है,
0: है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपने हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
1: वर्षगांठ
0: तो
1: है।
0: आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन सुनन सुना गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं, तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत
1: बिल्कुल
0: कीजिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
1: मिल ही
0: हैं।
1: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथ ही रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे, नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
0: जी
1: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहां हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप ज़रूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर ख़रीदारी करना इनकी कितना आसान EMIs पर किसी चीज़ को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल EMI और UPI का ज़माना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को

0: देखते हुए अपनी किस्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है, तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है, जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप, जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है, इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए। और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं,
1: जी
0: तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की, क्योंकि आपको बरसों से आदत है, तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन
1: बिल्कुल
0: उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है, तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए, तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है। और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही
0: हमें
1: कहा।
0: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है। उन चीज़ों से अगर बचना है, तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
1: आमदनी
0: रखनी,
1: होनी
0: या
1: चाहिए
0: तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
0: जी
1: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
0: हाँ
1: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
0: जी
1: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
0: हाँ
1: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक पे
0: और
1: चली
0: वो
1: जाती है।
0: जो 20 हज़ार की चीज़ आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हज़ार या 35 हज़ार तक की वो पड़ जाए।
1: हाँ बिल्कुल
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, क्योंकि आपने आपके पास ज़्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं, तो वही चीज़ें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पर महंग उसमें महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल ये सही कहा। देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं, जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
0: जी
1: हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त
0: जी
1: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है, जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें, तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है

0: इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीज़ों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है, और हमारे शरीर से बदबू आने का जो

0: कारण है शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले

0: प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ़ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल। और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में वहाँ रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं, जो मुक्त छंद की हैं, हम उसको लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया। तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी।

0: नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हालचाल है?
1: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
0: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
1: जमील भाई, खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
0: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
1: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
0: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
1: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
0: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
1: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
0: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
1: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
0: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल गुनगुनाइए।
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ तो बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो अच्छा। कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे तो ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, वो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो तो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: सिर्फ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपकी मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारतीय का सुनने वाला हूँ मैम। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अली तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं, आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी। आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश पाटकर की आवाज में ही ये गाना है, काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हेलो फरमाइश।
3: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
2: हिम्मत भाई नमस्कार।
3: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हालचाल हैं आपके?
3: मैं अच्छा हूँ दीदी।
2: क्या चल रहा है आजकल?
3: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
2: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
3: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
2: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
3: हाँ दीदी।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली, तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में?
3: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाली दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
2: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
3: अमरावती विदर्भ में? बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
2: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
3: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
2: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
3: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाना है दीदी।
2: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से।

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: बहुत परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून

0: कोशिश कर रहे
1: सही कह रहे हैं
0: आप, बड़ी अच्छी लगती थी।
1: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
0: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो बंद है।
1: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
0: जी जी।
1: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
0: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
1: जी,
0: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
1: जी,
0: लग जा गले
1: जी,
0: हसी रात फिर हो न हो,
1: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288, 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

श्रोता, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश FM बैंड 101.9 MHz पर। यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम हमारे दोनों चैनल पर एक साथ सुने जा सकेंगे।

0: मानस, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने गानों को सालों बाद सुनो और अचानक से इतनी सारी मेमोरीज आपकी आंखों के सामने फिर से वापस आ जाए? कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि सब कुछ साइड में चला जाए। अजीब बात है ना, कुछ चीज़ें पुरानी होकर भी कभी आउटडेटेड नहीं होती।
1: बिल्कुल चिनमय, और शायद इसी वजह से हर दौर अपने साथ कुछ नया ज़रूर लाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा साथ रह जाती है। कभी कोई सोच, कभी कोई आवाज़, और कभी कुछ ऐसे लोग जो टाइम के साथ और इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं।
0: और आज का ये सफ़र कुछ वैसा ही होने वाला है। कहीं फ्यूचर की बातें होंगी, कहीं उन लोगों की जिन्होंने अपने आइडियाज से पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट डाला, कहीं सिनेमा की क्रिएटिविटी होगी, और कहीं रेडियो की दुनिया का वो एक आवाज़ जिसने इमेजिनेशन क्रिएट की थी।
1: मतलब अगले कुछ मिनटों में थोड़ा नोस्टैल्जिया भी होगा, थोड़ी टेक्नोलॉजी भी, थोड़ी हिस्ट्री भी, और कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स भी होंगे जो शायद नॉर्मली डिस्कशंस में नहीं आते हैं।
0: जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और आज मेरे साथ है आरजे मानस।
1: तो और आप सुन रहे हैं युवाणी, जहाँ यूथ की सोच होती है, आइडियाज़ होते हैं और एनर्जी नॉनस्टॉप होती है।
0: तो चलिए शुरू करते हैं।

0: मानस, जब भी हम इंडिया एट द रेट 2047 की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? स्मार्ट सिटीज़, एआई, नई टेक्नोलॉजी, फास्ट ट्रांसपोर्ट, डिजिटल सिस्टम, यानी एक ऐसा इंडिया जो पहले से ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि इंडिया 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब उस इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की ज़िंदगी कैसी होगी? क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, डेवलपमेंट इस बात से भी होता है कि सोसाइटी अपने एक्सपीरियंस्ड लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस देती है।
1: बिल्कुल चिन्मय, और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि आज का जो ये जनरेशन यंग है और वही जो आगे चलकर है सीनियर सिटीजन बनने वाला है, इसलिए इंडिया एट 2047 सिर्फ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता है बल्कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ फैमिली वैल्यूज़ और रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, वहाँ सीनियर सिटीजन का सम्मान सिर्फ ट्रेडिशन ही नहीं है बल्कि एक सोशल स्ट्रेंथ भी है।
0: बिल्कुल मानस, अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो इंडिया बहुत तेज़ी से बदला है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफस्टाइल बदल दी, काम करने का तरीका बदल दिया और कम्युनिकेशन तक बदल दिया। लेकिन इसी बदलाव के बीच सीनियर सिटीजन्स का रोल भी बदल रहा है। पहले बुजुर्ग सिर्फ रिटायर्ड लाइफ से जोड़े जाते थे, लेकिन अब से बहुत से सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, और उसी के साथ वे सोशली कनेक्टेड हैं।
1: और यही बदलाव फ्यूचर इंडिया को और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2047 तक इंडिया में सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ने वाली है, यानी कि सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा एक्सपीरियंस्ड लोगों का होगा। और इसका मतलब है कि हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इमोशनल वेलबींग जैसे टॉपिक्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
0: मानस, फ्यूचर इंडिया में टेक्नोलॉजी सीनियर सिटीजन की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना सकती है। स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, वेयरेबल डिवाइसेस, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन जैसी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही है। इमेजिन करो, एक स्मार्ट वॉच हार्ट रेट को मॉनिटर कर रही है, मेडिकल रिमाइंडर दे रही है और इमरजेंसी में फैमिली मेम्बर्स को इंस्टेंटली अलर्ट भी कर सकती है। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, सपोर्ट सिस्टम बन रही है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो डिजिटल पेमेंट्स या फिर स्मार्टफोन्स को जो यूज़ करने का तरीका है वो भी उन्हें डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन अब बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल्स यूज़ करते हैं और साथ में कई ऐसे ऐप्स भी यूज़ करते हैं जो पहले उनके लिए दिक्कत वाले थे। यानी कि फ्यूचर इंडिया में जनरेशन गैप जो है वो शायद टेक्नोलॉजी

0: वजह से काफ़ी कम हो रहा है धीरे धीरे।
1: लेकिन मानस, सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, सीनियर सिटीजन्स के लिए इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हेल्थ से ज़्यादा लोनलीनेस की होती है। फास्ट लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल की वजह से हम फैमिली से बातचीत कम हो रही है, और यही चीज़ फ्यूचर में चैलेंज बन सकती है।
0: बिल्कुल, और शायद इसलिए इंडिया की सबसे बड़ी ताकत अभी भी रिलेशनशिप ही है। अगर फ्यूचर इंडिया को ट्रूली डेवलप्ड बनना है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि सीनियर सिटीजन सिर्फ सेफ ना हो बल्कि रेस्पेक्टेड और इमोशनली कनेक्टेड भी महसूस करें, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी भी सोसाइटी का सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है।
1: आज बहुत से सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहना चाहते हैं। कोई कंसल्टेंसी करता है, कोई टीचिंग करता है, तो कोई अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देता है, और फ्यूचर इंडिया में शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेगी, फ्लेक्सिबल जॉब्स, डिजिटल वर्क और कम्युनिटी बेस्ड रोल्स के जरिए।
0: और इससे एक पॉजिटिव चेंज भी आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सिर्फ डिपेंड नहीं रहेंगे बल्कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट भी करेंगे। यानी कि जो फ्यूचर इंडिया है वो उसकी एज शायद लिमिटेशन नहीं होगी बल्कि एक्सपीरियंस ही उसे अपनी पहचान बनाएंगी।
1: अगर सच में इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो डेवलपमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए। सिर्फ यंग जनरेशन को आगे बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, सीनियर सिटीजन्स को सिक्योर, रेस्पेक्टेड और कनेक्टेड रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस सोसाइटी में एक्सपीरियंस और यूथ साथ चलते हैं वही सोसाइटी बैलेंस तरीके से ग्रो करती है।
0: तो जिनमें फ्यूचर का जो इंडिया है वो सिर्फ स्मार्ट टेक्नोलॉजी या फिर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर से डिफाइंड नहीं होगा बल्कि इस बात से होगा कि वहाँ हर जनरेशन के लिए जगह कितनी रेस्पेक्टफुल और सपोर्टिव रहती है। और सीनियर सिटीजन उस फ्यूचर को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं मिलता।
1: बिल्कुल मानस, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्रेस वही असली प्रोग्रेस होती है जिसमें स्पीड भी हो और सेंसिटिविटी भी, और शायद इंडिया एट द रेट 2047 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही हो सकती है, एक ऐसा देश जहां फ्यूचर मॉडर्न हो लेकिन वैल्यूज़ हमेशा ह्यूमन रहे।
0: क्योंकि किसी भी देश की असली पहचान उसकी बिल्डिंग से ही नहीं होती है बल्कि उसके लोगों से बनती है।

0: तुमानस, आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो क्यूबा क्रांति के प्रमुख व्यक्ति है और उनका चेहरा, उनका लुक वैश्विक स्तर पर विरोध का प्रतीक बन गया।
1: चे ग्वेरा, जिनका जन्म 14 मई 1928 को हुआ था, वे एक अर्जेंटीनी मार्क्सवादी थे और क्रांतिकारी लेखक थे, गुरिला नेता थे, पॉलिटिशियन और मिलिट्री थ्योरिस्ट भी थे।
0: एक युवा मेडिकल छात्र के रूप में ग्वेरा ने पूरा साउथ अमेरिका ट्रैवल किया और वहाँ की गरीबी, भूख और बीमारियों को देखकर वे काफ़ी चिंतित हो गए। लैटिन अमेरिका में चले आए और फिर अमेरिका रहे और अमेरिका के पूंजीवादी शोषण को खत्म करने की इच्छा थी।
1: यहीं से उन्होंने राष्ट्रवादी जोकेब और जेब के नेतृत्व में सामाजिक सुधारों में शामिल होने को प्रेरित होकर CIA की मदद से यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के इशारे पर तख्ता पलटने ग्वेरा की जो राजनीतिक सोच थी उसे और भी ज़्यादा मजबूत किया।
0: क्यूबा क्रांति के बाद ग्वेरा एक नई सरकार में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। युद्ध के दौरान अपराधी ठहराए गए लोगों की उन्होंने अपीलें सुनी। उद्योग मंत्री के रूप में कृषि भूमि सुधार लागू किया, सफल संरक्षता अभियान का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय बैंक अध्यक्ष के साथ क्यूबा सशस्त्र बलों के निदेशक भी रहे।
1: ग्वेरा एक विपुल लेखक और डायरी राइटर भी थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण गुरिला युद्ध नियमावली के साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल यात्रा के बारे में एक बेस्ट सेलिंग संस्मरण भी किया।

0: तो मानस, आज के यंग टेक्नोक्रेट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा की जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में टेक्नोलॉजी और न्यू आइडियाज से पूरी दुनिया में अपने नाम की एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मार्क ज़करबर्ग की,
1: जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हासिल कर ली और इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना भी की और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं।
0: इनका जन्म आज ही के दिन सन 1984 में न्यूयॉर्क के वाइट प्लेन्स में हुआ। बचपन में ही इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 11 साल की उम्र में ही उन्होंने जेकनेट नामक का एक प्रोग्राम बनाया जिससे उनके घर का कंप्यूटर और पिता के डेंटल क्लिनिक का कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे।
1: मार्क ज़करबर्ग ने कुछ समय के लिए हार्वर्ड कॉलेज में भी पढ़ाई की और फरवरी 2004 में अपने रूममेट्स के साथ मिलकर उन्होंने फेसमैश नाम की एक ऐप की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर उसी ने फेसबुक का भी रूप लिया। 2008 में 23 की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनर्स में शामिल हो गए और उन्होंने अपने इतने फंड का इस्तेमाल मल्टीपल डोनेशंस में भी किया।
0: बिल्कुल, सफलता इतनी आसानी से नहीं आती, इसलिए ज़करबर्ग का शुरुआती करियर भी कई कानूनी परेशानियों से निकला। वेबसाइट के निर्माण और ओनरशिप के साथ उन्होंने यूज़र प्राइवेसी को लेकर भी कई मुकदमे चले हैं।
1: इन्होंने स्टार्टअप एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की और 2010 में न्यू जर्सी के पब्लिक स्कूल में $100 मिलियन दान में देने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा 2010 में द गिविंग प्लेज पर भी उन्होंने साइन किए, जिसमें साथ साथ अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दान करने की बात है।
0: बिल्कुल मानस, और हाल ही में हमने सुना है कि उन्होंने मेटा के अपने जो 99% शेयर्स है वो भी डोनेट कर दिए हैं। इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि उनके करियर की सफलता के साथ साथ डोनेशन की भावना भी रखते थे। दुनिया के लोकप्रिय व्यक्तियों में से वो एक हैं और इसीलिए आज वो कई युवाओं के रोल मॉडल हैं।

0: ये वो भी ऐप से, वाह, फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों वो आज के हमारे बर्थडे सेलिब्रिटीज में चलते हैं जॉर्ज लुकास की ओर, और जो कि एक अमेरिकन फिल्म मेकर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। इन्होंने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी, इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी, लुकास फिल्म्स, लुकास आर्ट्स, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक्स की भी स्थापना की है।
4: 2012 में वॉल्ट डिज्नी को बेचने से पहले लुकास फिल्म के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। उन्होंने अपने छात्र जीवन में कई शॉर्ट फिल्म्स का लेखन और निर्देशन किया। टैक्स 1138 जैसे सहारा तो काफ़ी गया, पर आर्थिक रूप से कमज़ोर रही।
3: राइटर डायरेक्टर के रूप में उनका अगला कदम अमेरिकन ग्रेफिटी था, जो कि 1960 में कैलिफोर्निया में बिताए उनके बचपन पर बेस्ड थी।
4: लुकास इतिहास के सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से सफल फिल्म मेकर्स में से एक है। नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली 100 में से 10 फिल्म्स का निर्देशन लेखन इन्होंने ही किया है।
3: अपनी कंपनी इंडस्ट्रियल लाइट और स्काई वॉकर साउंड में से उन्होंने 1980 के जो दशक था उसमें लगातार 2012 तक डिज्नी को बेचे जाने से लगभग पहले हर बड़ी फिल्म का हिस्सा रहे और इकोनॉमिकली इससे स्ट्रॉन्ग भी हुए।
4: और मानस, अगर हम फिल्म करियर के अलावा बात करें तो शिक्षा और कला को समर्पित भी कई संगठनों और संस्थानों की स्थापना में भी इन्होंने समर्थन दिया, जिनमें जॉर्ज लुकास एजुकेशनल फाउंडेशन शामिल है, जो कि स्कूलों और पुस्तकालयों की बैंड फंडिंग देता है।
3: लुकास का जो 4 अकेडमी फिल्म पुरस्कार से भी नामांकित किया गया है, जिनमें अमेरिकन ग्रेफिटी और स्टार वॉर्स के लिए बेस्ट राइटर और डायरेक्टर शामिल है।
4: लुकास की फिल्म स्टार वॉर्स का निर्माण काफ़ी परेशानियों से भरा था, लेकिन रिलीज के बाद यही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और साथ ही सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसे 7 अकादमी पुरस्कार भी मिले।
3: फिल्म मेकर के बाद आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर की, कैथरीन एलिस ब्लेंचेट की, जिन्होंने अपने पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है।
4: इन्होंने स्वतंत्र फिल्मों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों सहित मंच और स्क्रीन पर अलग अलग कार्यों के लिए जाना जाता है, इसलिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि अकादमी अवार्ड, अभिनेता पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसमें शामिल है।
3: अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 1992 में ऑस्ट्रेलियन स्टेज से की थी और फिल्म डेब्यू 1997 में। 1998 में आए ड्रामा एलिजाबेथ में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन का किरदार से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें पहला एकेडमी अवार्ड भी नामांकित हुआ।
4: 2004 में आई बायोपिक द एविएटर में कैथरीन के पोर्ट्रियल के लिए बेस्ट असिस्टेंट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। उसके बाद 2013 कॉमेडी ड्रामा ब्लू जैस्मीन में न्यूरेटिक के रोल के लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता।
3: इन्होंने कई ऑस्कर नामांकित भूमिकाएं भी निभाई है, जैसे कि 2006 की आई नोट्स ऑन अ स्कैंडल, 2007 की आई एम नॉट देयर, 2015 की कैरोल और 2022 की टार। इन सब परफॉर्मेंस से वे सबसे ज़्यादा नामांकित ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस बन गई।
4: सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं की अगर हम बात करें तो द लॉर्ड ऑफ रिंग्स ट्रायोलॉजी और इसी का प्रीक्वल द हॉबिट ट्रायोलॉजी, इंडिया जॉन्स एंड द

0: क्रिस्टल स्कल एंड द क्यूरियस केस, सिंड्रेला, थॉर रिगमार्क और ओशंस 8, डोंट लुक अप भी इसमें शामिल है।
1: 2017 की द प्रेजेंट के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए टोनी अवार्ड से भी नामांकित हुई। कई मानद पुरस्कार जीतने के बाद इन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2001 में शताब्दी पदक भी सम्मानित किया गया।
0: और उसी के बाद 2017 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कैंपेन अपॉइंट किया गया। 2012 में फ्रांस सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए भी नियुक्त किया।
1: वहीं टाइम ने उन्हें 2007 में दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों में भी शामिल किया और 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में भी इंक्लूड किया।

0: तुमानस फिल्म मेकर और एक्ट्रेस की बात करने के बाद हम अब बात करने वाले हैं अमेरिकन सिंगर और एक्टर फ्रैंक सिनात्रा की, जो कि ऑल ब्लू आइज और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के नाम से भी काफ़ी मशहूर थे।
1: 20th सेंचुरी के

0: मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरटेनर फ्रैंक का जन्म 12 दिसंबर को 1915 में हुआ था। न्यू जर्सी में इटालियन इमिग्रेंट के घर इनका जन्म हुआ था और वहीं से स्विंग एरा में इन्होंने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत की थी।
1: इन्होंने 1939 में हैरी जेम्स बैंड में गायक के रूप में शामिल हुए और उसके बाद चार साल बाद कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ काम शुरू कर दिया।
0: 1946 में जेम्स ने अपना जो पहला एल्बम द वॉइस ऑफ जेम्स सिनात्रा रिलीज किया। इसके बाद उन्होंने साइन किया कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ और नेल्सन रिडल के अरेंजमेंट में कई एल्बम्स इन्होंने रिलीज किए,
1: जिनमें इन द वी स्नेल आवर्स सॉन्ग फॉर सिंगिंग कवर्स नोटेबल रही। 1960 में कैपिटल रिकॉर्ड्स छोड़ इन्होंने खुद की रिकॉर्ड लेबल शुरू कर दी जिसका नाम था रिप्राइज रिकॉर्ड्स।
0: 1965 में इन्होंने सितंबर ऑफ माय ईयर्स रिकॉर्ड किया और एमी अवार्ड्स विनर टेलीविजन स्पेशल में फ्रैंक सिनात्रा अ मैन एंड हिज म्यूजिक में रोल किया।
1: सिनात्रा विश्व के सबसे अधिक बिकने वाले कलाकारों में से एक है, जिनके वैश्विक स्तर पर अनुमानित 150 मिलियन रिकॉर्ड बिके हैं।
0: सिनात्रा ने सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी सक्सेसफुल करियर बनाया। फिल्म फ्रॉम हियर टू एटर्निटी में उन्होंने बेस्ट हेल्पिंग एक्टर का अवार्ड भी जीता।
1: इसके बाद द मैन विद गोल्डन आर्म और द मंचूरियन कैंडिडेट में उन्होंने रोल किया और साथ ही ऑन द टाउन, गग्स एंड डॉल्स, हाई सोसाइटी जैसे संगीत नाटक में भी काम किया,
0: जिनमें पॉल जॉय के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी से भी नवाजा गया। और अपने करियर के एंड में उन्होंने जासूसों के रोल में निभाया, जैसे कि टोनी रोम और द डिटेक्टिव शामिल है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो मानस, आज अगर हमें म्यूजिक सुनना हो तो बस मोबाइल उठता है, प्लेलिस्ट खुलती है और सेकंड्स में गाना शुरू हो जाता है। सब कुछ इतना इंस्टेंट हो गया है, सॉन्ग्स भी, एंटरटेनमेंट भी और अटेंशन भी। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब गाने को सुनने के लिए उसे सिर्फ प्ले नहीं किया जाता था, उसका इंतज़ार किया जाता था। लोग रेडियो सेट के आसपास बैठते थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक एंटिसिपेशन रहता था कि आज कौन सी आवाज़ सुनाई देगी, कौन सी धुन बजेगी और कौन सा कार्यक्रम पूरे गांव का या घर का माहौल बदल देगा। और शायद यही रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, उसमें विजुअल्स नहीं थे लेकिन इमेजिनेशन थी, उसमें स्क्रीन्स नहीं थी लेकिन कनेक्शन था। और इंडिया में अगर रेडियो की बात हो तो एक नाम अपने आप हमारे सामने आ जाता है, जो कि है आकाशवाणी। एक ऐसा नाम जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज नहीं बना बल्कि जनरेशंस की यादों का, इमोशंस का हिस्सा बन गया।
1: बिल्कुल चिन्मय, और यही रीज़न है कि आज जब आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है तो ये सिर्फ एक संस्था का सेलिब्रेशन नहीं लगता बल्कि उस पूरे सफ़र का सेलिब्रेशन लगता है जिसने इंडिया की आवाज़, संगीत और संस्कृति को दशकों तक लोगों तक पहुंचाया। आकाशवाणी का सफ़र ऑफिशियली 1936 में शुरू हुआ था जब ऑल इंडिया रेडियो के रूप में ब्रॉडकास्टिंग

0: सर्विस स्थापित हुई थी। बाद में इसे नाम मिला आकाशवाणी, यानी कि आकाश से आने वाली वाणी, और धीरे धीरे यह सिर्फ न्यूज़ या अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। गांवों से लेकर शहरों तक सुबह की शुरुआत भी रेडियो से होती थी और शाम की रौनक भी। कहीं समाचार सुनाई देते थे तो कहीं नाटक, वहीं कहीं कविताएं और कहीं ऐसी मधुर धुनें जो पूरे घर का माहौल बदल देती थी।
1: अगर आकाशवाणी के सबसे बड़े कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का नाम सबसे ऊपर आता है। एक समय में जब क्लासिकल म्यूजिक सीमित ऑडियंस तक ही पहुंच पाता था, बड़े कलाकारों को सुनना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। उनके लिए विशेष सभाएं, दरबार या बड़े आयोजन होते थे, लेकिन रेडियो ने इस दूरी को ख़त्म कर दिया। आकाशवाणी ने पहली बार क्लासिकल म्यूजिक को घर घर तक पहुंचाया। लोगों ने अपने घरों में बैठकर पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान और MS सुब्बुलक्ष्मी जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट की आवाज़ें सुनी। और यही वो समय था जब क्लासिकल म्यूजिक इलाइट सर्कल से निकलकर आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ।
0: और सबसे खास बात यही है चिन्मय, कि आकाशवाणी ने सिर्फ म्यूजिक ब्रॉडकास्ट नहीं किया है, बल्कि उसने उसकी गरिमा और क्वांटिटी को भी बनाए रखा है। यहाँ आर्टिस्ट के प्रॉपर ऑडिशंस होते थे, ग्रेडिंग सिस्टम होती थी और परफॉर्मेंस को भी बहुत सीरियसनेस के साथ प्रेजेंट किया जाता था। यानी रेडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रिजर्व और प्रमोट करने का भी एक मजबूत माध्यम था। और शायद यही वजह है कि कई लोगों के लिए क्लासिकल म्यूजिक की पहली याद रेडियो से जुड़ी हुई है।
1: क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ सुरों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें साधना होती है, डिसिप्लिन होता है और कई इमोशंस की एक गहराई होती है। सिर्फ राग सुनाई नहीं देती, वो महसूस होती है। और आकाशवाणी ने इसी एहसास को लाखों लोगों तक पहुंचाया। उस समय लोग सिर्फ गाने सुनने के लिए रेडियो नहीं खुलते थे, वो सीखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए रेडियो को सुनते थे। कई यंग म्यूजिशियंस और स्टूडेंट रेडियो प्रोग्राम से इंस्पायर होते हैं, और यानी रेडियो सिर्फ लिसनर्स नहीं बनाए, फ्यूचर आर्टिस्ट भी तैयार किए।
0: और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कल्चरल स्ट्रेंथ भी थी, कि इसने एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंडियन ट्रेडिशंस और म्यूजिकल हेरिटेज को भी आगे बढ़ाया। क्योंकि कल्चर तभी जिंदा रहता है जब वो लगातार अगली जनरेशंस तक पहुंचता रहे, और आकाशवाणी ने डिकेड्स तक यही काम किया है।
1: बिल्कुल, और यही काम करते आ रहा है। और इसी खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त है एक ऐसे गीत का जो म्यूजिक और इमोशंस दोनों को साथ लेकर चलता है।
0: तो सुनते हैं ये शानदार प्रस्तुति और उसके बाद लौटेंगे आकाशवाणी और इंडियन म्यूजिक के इस खास सफर के साथ वापस।

0: तो मानस, अक्सर जब रेडियो और इंडियन म्यूजिक की बात होती है तो लोग क्लासिकल म्यूजिक को याद करते हैं, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। इसने इंडियन म्यूजिक को, फोक म्यूजिक को और रीजनल म्यूजिक ट्रेडिशंस को भी उतना ही सम्मान दिया, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी पहचान उसकी डाइवर्सिटी है। हर राज्य की अपनी अलग आवाज़, अपनी अलग रिदम और अपनी अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी है। राजस्थान के लोकगीत, पंजाब के फोक, बंगाल के बॉल सॉन्ग्स और महाराष्ट्र की लावणी और उत्तर पूर्व के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, आकाशवाणी ने इन सबको नेशनल प्लेटफॉर्म दिया
1: और ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है चिन्मय, क्योंकि बहुत से रीजनल आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ शायद अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन रेडियो उन्हें पूरे देश तक पहुंचाने का काम करता है। फोक म्यूज़िक में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, बल्कि उन लोगों की मिट्टी, ट्रेडिशंस और इमोशंस जुड़े होते हैं, और आकाशवाणी ने इस डाइवर्सिटी को सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं किया है बल्कि उसे सेलिब्रेट भी किया है।
0: आज हमारे पास स्ट्रीमिंग ऐप्स है, प्लेलिस्ट है, AI रिकमेंडेशंस है, लेकिन फिर भी रेडियो की फीलिंग सबसे अलग है, क्योंकि रेडियो सिर्फ कंटेंट नहीं देता, वो हमें कंपेनियनशिप देता है। जब कोई RJ बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो सीधे आपसे बात कर रहा हो, उसमें एक वॉर्म्थ होती है, एक ह्यूमन कनेक्शन होता है, और शायद यही चीज़ें आपको आज भी हमसे रिलेवेंट रखती है।
1: समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लिसनिंग हैबिट्स बदली, लेकिन रेडियो की जो वॉर्म्थ है वो आज भी वैसी की वैसी है, और शायद यही वजह है कि इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद भी आकाशवाणी की पहचान आज तक बनी हुई है, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।
0: और मानस, अगर ध्यान से देखा जाए तो आकाशवाणी सिर्फ एक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये इंडिया की कल्चरल मेमोरी बन गया है। जहाँ म्यूज़िक था, लिटरेचर था और पोइट्री थी, रीजनल लैंग्वेजेस भी थी, यानी इंडिया की पूरी डाइवर्सिटी एक ही जगह से सुनाई देती थी। और यही रीज़न है कि 90 साल बाद भी आकाशवाणी सिर्फ पुरानी याद नहीं दिलाता, बल्कि आज भी लोगों के इमोशंस, कल्चर और म्यूज़िक से जुड़ा हुआ महसूस होता है।
1: और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि इतने सालों के बाद भी रेडियो की आवाज़ जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही है, उन्हें जोड़ती है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाती है, क्योंकि आखिर में आकाशवाणी सिर्फ रेडियो नहीं रहा है बल्कि ये इंडिया की आवाज़ बन गया है।

0: तो दोस्तों अगर इसी के साथ बात करें आज के इतिहास की, तो आज ही के दिन 1957 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र और दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में हुआ था। आज ही के दिन देश भर में उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है।
1: और 1956 में भारत सरकार ने देश में दशमलव मुद्रा की शुरुआत भी आज ही के दिन से करी थी, जिसे 1957 में लागू किया था। तो दोस्तों अब हो रहा है समय आपसे विदा लेने का, दीजिए हमें इजाजत। मैं था आपका रेडियो दोस्त आज मानस, और मेरे साथ थे
0: चिन्मय मिनारिया।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को

0: उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी।
2: 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fun.
1: श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। इस शाम को सजाकर फिर हाजिर हैं आपके साथ। प्रस्तुत है राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम झूम को।

राम राम सा घणी खम्मा घणो घणो स्वागत एफएम लोकल विंडो में आप सुनी रिया हो राजस्थानी लोकगीतारो और राजस्थान री आन बान शान री कहानी कहवा वालो मन भावन रंग रंगीलो रास रसीलो कार्यक्रम झूम को और मुँह आपरे लारे आज अणी संध्या माए आरजे विवेक। आज आपा सुरारी छाँव में घुमाला राजस्थान री धरती जठारी माटी भी गीत गुनगुनावे और वायरो भी लोक धुन हुनावे। आपना राजस्थान खातर एक कहावत घणी कही जावे सा पग पग रा रंग और कदम कदम री संस्कृति एहे मारो राजस्थान एहे मारो राजस्थान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री धरती। तो चालो सा अबे आपनु हुणावा एक अमर लोक गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी का लोकल विंडो रोजाना एंजॉय कीजिए सुबह 9:30 से 12:00 तक। कभी सुनिए नए फिल्मी गाने,

0: और कभी सुनिए बहुत पुराने गाने।
1: जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है
0: और कभी सदाबहार नगमे।
2: देख लो आज हमको जी भर के।
0: खास मुलाकातें हमारे खास मेहमानों से और बहुत कुछ ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक्सिटी के लोकल विंडो में। जरूर सुनिए 9:30 से 12 तक और शाम को 5 से 7 तक भरपूर मनोरंजन हमारे लोकल विंडो में

श्रोताओं, आप हुनी रिया हो राजस्थानी लोक गीतारों मन भावन रंगारंग रास रसीलो कार्यक्रम झूम को, और मुँह आपरे ला रहे आप रो रेडियो दोस्त आरजे विवेक। देखो सा, राजस्थानी गीत हुनता ही मन में अपनत्व रो भाव जाग जावे। राजस्थान री आव भगत आखी दुनिया में जानी जावे सा। 18 बड़ा बुजुर्ग कहवे, जी को आवे द्वार ओही भगवान रो अवतार। या बात राजस्थान रे रग रग में बसी है।

देखो साथी भाया, राजस्थान री लोक धुना में मिश्री जैसी मिठास है। चंग री थाप होवे या ढोलक री गूंज, तन मन आपू आप थिरक उठे। एक कहनी याद आवे सा, माटी बोले तो दिल डोले। अर राजस्थान री माटी रो कई कहनो, सच में सुरासू वीरासू बलिदानसू और त्यागसू भरी पड़ी है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: देखो सा, राजस्थानी घूमर खाली और खाली नृत्य कोनी सा राजस्थान री पहचान है। रंग बिरंगो घाघरो और घूमती चुनर देख मन घणो खुश वेवेसा। और कहे भी तो गयो है, जितनी रंगीली पगड़ी उतनो रंगीलो मन। और राजस्थान रो मन तो सब सुनिरालो है सा।

देखो बहनों और भाया, राजस्थान री आन बान शान मात्र किला में कोनी, लोकारी बोली में भी बसी है। आपनो राजस्थान प्रेम त्याग और शौर्य री धरती है। एक पुरानी कहावत के वैसा, राजपुताना री रीत सिर कट जावे पण वचन न टूटे। ए धरती हमेशा हमेशा मान सम्मान निभावन री सीख देवेसा।

राजस्थानी धोरा ऊंट और दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत यही राजस्थान री असली तस्वीर है सा। सांझ पड़े जब सूरज धोरा पर ढले तो लागे जो सोनो बिखर गयो वे। और कहवे भी तो है रेत रो कणकण इतिहास सुनावे सा। और सच में राजस्थान रो हर कण वीरारी गाथा कहे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम झूम को। इसी के साथ एफएम लोकल विंडो का समय भी अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 MHz पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से हम रिले करेंगे अगला कार्यक्रम जयमाला। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

फौजी साथियों के इस कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज पूजा नरानिया। जय हिंद साथियों। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: ये देशभक्ति गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से आपने सुना। महेंद्र कपूर और साथियों के स्वरों में इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार, गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर।

0: पड़े भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना गीत अभी आपने सुना, गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर थे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सदा सुहागन फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत, गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सदा सुहागन इस फिल्म से अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नसीब अपना अपना इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में सुनिए अगला गीत। एसएच बिहारी के बोल, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत के बोलों को लिखा है इंदिवर ने और बप्पी लहरी का संगीत है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म का नाम मुद्दत।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना मुद्दत फिल्म से। अब आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ा रुपया, इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, बसु मनोहरी का संगीतबद्ध किया गीत।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गीत वादा करो सा वादा करो जानम, ये आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म आनंद से। गायिका लता मंगेशकर हैं, गुलजार के लिखे बोल, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

आनंद फिल्म का गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया, गुलजार के बोल थे सलिल चौधरी का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है। जय हिंद साथियों।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा।

0: आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए।
1: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
2: दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार, जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी, जानना चाहेंगे सबसे पहला मंच पर जाने का मौका कब मिला आपको?
3: मंच पर जाने का क्लासिकल म्यूजिक बजाने के लिए, आई थिंक गुरु जी के, मतलब जहां मैं जाता हूँ सीखने के लिए, वो वही पर गुरु पूर्णिमा के
2: अच्छा
3: के टाइम पे जब स्टेज पे पहली बार मौका मिला था।
2: हाँ, हाँ।
3: तभी वही एक था
2: गुरुकुल के वार्षिकोत्सव।
3: हाँ
2: जी। इसके अलावा किसी ने आप प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया हो या किसी ग्रुप के साथ, किसी बैंड के साथ जुड़ने का मौका मिला हो?
3: आई थिंक जो एकदम पहले का जो प्रोमिनेंट मुझको एक परफॉर्मेंस जो याद है वो था पिंपरी चिंचवाड़ में एक स्वरजंकार म्यूजिक फेस्टिवल का ही एक था। उसमें एज एक फ्यूजन ग्रुप के पार्ट में मैं गया था।
2: अच्छा।
3: तो उस टाइम आई थिंक सितार प्लेयर थे स्टेज पे, वायलिन थे
2: जी,
3: तबला प्लेयर्स थे, ड्रमर, और फिर मैं एक उसमें से एक म्यूजिशियन था।
2: हुँ.
3: तो वो क्लासिकल के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअली मेरे लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले पहले था, मतलब मैं जस्ट 4-5 साल ही हुए थे और मैं स्टेज पे था, बहुत नर्वस था।
2: हाँ।
3: और बाकी सब काफी एक्सपीरियंस।
2: वहाँ क्या बजाने के लिए मिला आपको, मतलब क्या बजाने के लिए कहा गया आपसे?
3: वहाँ पर वही है कि क्लासिकल म्यूजिक में काफी इम्प्रोम्प्टू चीजें काफी होती है स्टेज
2: जी
3: पे।
2: जी।
3: तो वो सीखने को काफी मिला। तो हम एक राग में कुछ फ्यूजन कॉम्पोजिशन थी, आई थिंक किरवानी राग था, और उसमें सब बजा रहे थे और बीच बीच में मुझे मेरे तरफ इशारा कर देते थे।

0: कि अच्छा अभी आप कुछ बजाइए, और फिर
1: हाँ
0: और वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस होते हैं और उन्हें पता है क्या चल रहा है, बट आप
1: जी
0: फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो
1: जी
0: तो।
1: जी आपने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक बनाया है बैंड?
0: हाँ, तो वो एक कलाइडोस्कोप नाम का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है,
1: जी
0: और ये एक्चुअली काफी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों से मैं एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या ही ज्यादा परफॉर्म करता आया हूँ, और क्लासिकल म्यूजिक में जो अकम्पनी का जो पार्ट होता है, जो जो हार्मोनियम प्लेयर करते हैं या जो सारंगी वादक करते हैं वोकलिस्ट के साथ,
1: जी
0: उस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट पर अकम्पनीमेंट करने के लिए।
1: अच्छा
0: इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस का और वोकलिस्ट का
1: हाँ
0: होता है वो काफी अलग होता है,
1: अच्छा
0: और जिस तरह से वोकलिस्ट, क्योंकि उनके पास शब्द होते हैं, तो जब वो शब्दों को यूज करके जो सोच निकलती है उनमें से,
1: हाँ
0: वो एक सीखने को काफी मिलता है कि अच्छा इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये
1: अच्छा
0: सेम आलाप को अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल पे ऐसे कर रहा हूँ,
1: हाँ
0: एक वोकलिस्ट किसी और तरीके से जो सोच रहा है,
1: जी,
0: तो उससे काफी सीखने को मिलता है जब ऐसी चीजें
1: यही
0: कर।
1: अपनी सोच रखने का मौका आपको मिलता है जब आप अकेले बजा रहे हैं और कुछ परफॉर्म
0: हाँ,
1: कर।
0: अकेले बजा रहा हो तो मेरी ही सोच होती है,
1: बराबर
0: जब अकंपनी कर रहा होता हो
1: हाँ
0: तो वो सोच एक्चुअली सिंगर की होती है, और
1: जी
0: आपका काम होता है कि वो सोच को कैसे आप एक तो उनकी शैडो बन के कैसे रह सकते हो
1: हाँ
0: वो,
1: हाँ
0: और प्लस उसको ब्यूटिफाई कैसे कर सकते हो वो मोमेंट, ये जो
1: जी
0: दो चीजें
1: जी
0: होती है कि कहाँ बजाना है कहाँ नहीं बजाना है,
1: बिल्कुल
0: ये सब चीजें जो नेचुरली आप सीखने लगते हो जब आप
1: हाँ
0: वोकलिस्ट के
1: हाँ
0: साथ अकंपनी करने की कोशिश करते हो।
1: जी। शास्त्रीय संगीत सीखने की ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम किन कलाकारों को सुनते हैं, किन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत
0: हाँ,
1: इंस्पायरिंग होती है ये रिकॉर्डिंग्स।
0: यस यस यस यस।
1: आप किसका नाम लेना चाहेंगे जहां तक गिटार की बात है?
0: अच्छा, जहां तक गिटार की बात है तो दो ऐसे जायंट्स हुए हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो गिटार पे, मतलब एक तो पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल हाँ
0: जो स्लाइड गिटार, हवाईयन गिटार जो उन्होंने बजाई,
1: हाँ हाँ
0: और फिर उसी को लेके जो आगे लेके गए वही सोच को पंडित विश्वमोहन भट्ट जी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़े
0: तो
1: नाम हैं
0: बहुत बड़े नाम है। हाँ,
1: और इनका योगदान बहुत विशाल है।
0: बहुत बहुत बहुत, और दोनों के स्टाइल्स भी इतने अलग
1: जी
0: है कि
1: जी
0: वो जब आप सुनते हो दोनों का म्यूजिक
1: हाँ हाँ
0: एकदम कुछ अलग ही चीज मतलब सुनने को मिलती है।
1: जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में करियर शायद कुछ और होता और जीवन कुछ किसी और तरह का होता,
0: ऐसा नहीं लगा मुझे एक्चुअली,
1: क्यों? अपनी पढ़ाई लिखाई एक अलग क्षेत्र में आपने की है और
0: हाँ
1: अब
0: हाँ हाँ
1: आप पूरी तरह से एक कलाकार के रूप में अपना करियर बना रहे हैं।
0: नहीं, क्योंकि एक चीज ऐसी थी कि कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा, अगर मतलब वो मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक कभी नहीं था कि अच्छा इसमें पैसा ज्यादा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ,
1: हाँ
0: वो एक्चुअली वो म्यूजिक अच्छा लग रहा है इसलिए मैं म्यूजिक कर रहा
1: क्या
0: हूँ,
1: बात है
0: ये जो सोच थी वो पहले से ही थी मुझ में, तो फिर
1: क्या बात। और ये एक
0: उस,
1: तरह की फलसफाना सोच है, फिलोसॉफिकल
0: हाँ
1: सोचने
0: मतलब
1: का जो
0: आप
1: तरीका है, बहुत अच्छे। क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में, एक कलाकार के रूप में आपकी अपेक्षाएं क्या है?
0: मुझे जितना हो सके ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए मिलना चाहिए उतना ही है, बाकी तो वैसे तो
1: हाँ
0: जो जो सीखने में जो मजा आता है वो तो आता ही है, रोज वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चल रहा होता है जब आपकी थॉट इंप्रूव होते रहती है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: जो जो रियाज में से एक तो मैकेनिकल रियाज होता है,
1: जी
0: बट एक पॉइंट के बाद वो थॉट के लेवल पे आ जाता है कि अच्छा आप एक ही चीज को कितने तरह से बजा सकते हो या एक ही चीज को कैसे अलग तरीके से, और उसमें मजा आने लगता है, मतलब
1: जी
0: वो एक सेल्फ फुलफिलिंग चीज हो जाती है कि आप रियाज कर रहे हो और आपको वो रियाज में से ही इतना सब मिल रहा है कि आप एक्चुअली बहुत कुछ ऐसे चीजों के पीछे भागना कम हो जाता है एक पॉइंट के
1: जी
0: बाद।
1: ऑडियंस भी बहुत बदल गई है। एक जमाना था
0: राइट,
1: जब लाइव शोज लोग देखने जाते थे और कुछ होता
0: हाँ
1: नहीं था, रेडियो पे सुनते थे क्लासिकल म्यूजिक,
0: यस,
1: बाद में दूरदर्शन आया, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, बहुत सारे ऑप्शंस थे लोगों के पास देखने के लिए।
0: हाँ,
1: अब तो इंटरनेट के जरिए जब चाहे जो चाहे हम देख सुन सकते हैं,
0: यस,
1: तो आपको क्या फर्क मालूम पड़ता है अब? और ऐसी बदली हुई ऑडियंस और खासतौर से यंग जनरेशन,
0: राइट,
1: उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे मंच पर?
0: क्या करना चाहूंगा।
1: क्योंकि उनकी सोच की उन्हें जो अच्छा लगता है, उनकी पसंद
0: हाँ,
1: नापसंद को देखते हुए।
0: तो अभी एक्चुअली हो कैसे गए, और इससे एक्चुअली हम एज एन आर्टिस्ट भी काफी गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग जब एज अ रेफरेंस मटेरियल सुन रहे होते हैं
1: जी
0: म्यूजिक, तो हम लोग उस्ताद आमिर खान जी का सुन रहे होते हैं, उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी,
1: और
0: वो टाइम का जो म्यूजिक था जब बहुत ज्यादा ठहराव था, एक राग डेढ़ घंटा दो घंटा गाते थे वो लोग,
1: जी
0: और ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स है, मतलब सुन ऐसा तो सुना है कि तीन चार घंटा भी गाते थे तब।
1: बिल्कुल एक ही राग तीन तीन चार चार घंटे चलता था।
0: ये चीज हमने नहीं देखी, हमारी जनरेशन ने कभी देखी नहीं, हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में जितना सुना है उतना। और होता कैसा है, जब आप ये सुन

0: होते हो तो आपका म्यूजिक भी वैसा होने लगता है कि आपको भी स्लो आलाप करना पसंद आने लगता है, और
1: अच्छा
0: लेकिन जब आप पहली बार ऑडियंस के सामने जाते हो तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि आपका स्लॉट ही 45 मिनट्स का होता है या 30 मिनट्स का होता है, और
1: जी
0: उसमें आप आधा घंटा आलाप तो कर नहीं सकते। ये जो सोच है ना, ये एक्चुअली हमारे गुरु जी ने काफी इसके बारे में गाइड किया है, क्योंकि और मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशली, जितने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं उतने ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा अभी ये सिचुएशन में ऐसे करना है। आपका एक प्रैक्टिस रूम में जो होता है वो एक अलग है, जब आप ऑडियंस के सामने जाते हो तो अलग
1: हाँ
0: होता है।
1: हाँ हाँ
0: ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है, मतलब उस
1: बिल्कुल
0: तो थोड़ा फास्ट पेस होता है, तो अभी अगर मेरे पास आधे घंटे का स्लॉट है तो मैं आलाप बहुत नहीं कर सकता हूँ, और ऑडियंस भी उतना आलाप एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, एक टाइम के
1: जी
0: बाद फोकस शिफ्ट होने लगता है। तो फिर उस तरह से जिस ऑडियंस के सामने आप हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा
1: अपने प्रेजेंटेशन
0: मॉडिफाई,
1: को डिजाइन करना पड़ता है
0: प्रेजेंटेशन को
1: अकॉर्डिंगली।
0: थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। बहुत
1: जी
0: बार
1: जी
0: स्टेज पे आपको दिख रहा होता है कि अच्छा अभी ऑडियंस नहीं पकड़ में नहीं, अभी थोड़ा ड्रिफ्ट हो रही है उनके थॉट, तो
1: जी
0: फिर आपको थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ता है अच्छा अभी ये अच्छा लग रहा है तो फिर इस तरह से बजाते हैं।
1: कभी ऐसा हुआ होगा कि आप मंच पर हैं, आपने शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, मगर सामने ऑडियंस शायद कुछ और सुनना चाहती है।
0: नहीं, लेकिन अभी अब मंच पर जब बुलाया जाता है तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बुलाया जाता है, तो
1: जी
0: तब एक बात होती है कि आप प्रेजेंटेशन थोड़ा मॉडिफाई करो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाओ एज एन आर्टिस्ट,
1: हाँ।
0: और एक बात होती है कि आप परफॉर्मेंस ही चेंज कर दो। अभी अगर आप म्यूजिक ही चेंज कर दोगे फिर उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, तो
1: बराबर
0: आप जितना प्योर रख सकते हो, क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक प्योर होना ही चाहिए,
1: बिल्कुल वो तो बात है।
0: और उसी के अंदर काफी स्कोप है आपको डिजाइन करने का, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक शुरू बहुत स्लो टेम्पो से होता है और जा भी बहुत फास्ट टेम्पो तक, तो वो रेंज बहुत है, तो आप उसी में काफी कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ और ही बजाने लगो
1: जी
0: ताकि
1: जी
0: आप ऑडियंस को कैप्चर करो।
1: हाँ। और आपके अब तक 15-16 सालों से आप सीख रहे हैं, बहुत से राग अब तक आपके रियाज में आ चुके होंगे, कौन सा राग आपको फेवरेट लगता है अपना?
0: ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में फोकस ही चेंज हो जाता है कि अच्छा अभी ये राग में थोड़ा और करना है,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: फिर नया राग शुरू हो जाता है। तो हम लोग कुछ कुछ ऐसे राग होते हैं जो हमेशा उसमें रिटर्न आते ही है, कहीं भी नया राग हो कुछ भी हो तो भी, तो जैसे जोग हो गया, बिहाग हो गया, मालकाउंस, चारुकेशी, किरवानी,
1: अच्छा
0: भैरव, ये राग एक्चुअली मतलब ये दे आर कंसेप्ट इन देमसेल्स, ऐसे बोल सकते हो कि आप भैरव हो गया तो भैरव का एक कंसेप्ट होता है जो आपको अगर समझ में आया तो फिर आप अलग अलग तरह के भैरव बजा सकते हो, या
1: अच्छा
0: मालकाउंस का एक कंसेप्ट होता है
1: हाँ
0: वो एक बार समझ में आ गया तो आप अलग अलग तरह के काउंट्स बजा सकते हो, तो ये जो बेसिक्स है उसमें तो करते ही रहना पड़ता
1: अच्छा, मैं देख रहा हूं आप हाथ से भी बजा रहे हैं, मतलब उंगलियों से,
0: हाँ
1: और आपके एक उंगली में एक स्टील का रॉड लगा हुआ है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप, वो भी जरा बताइए।
0: ओके ये एक्चुअली वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आएगा अभी
1: हाँ
0: ऑडियो
1: हाँ
0: में, लेकिन गिटार पर क्या होता है ना, एक स्लाइड एक कंसेप्ट है
1: जी
0: जो मैंने पहले बोला था ब्लूज गिटार में, वो क्या होता है पाइप जैसा एक स्लाइड होता है जो आपके रिंग फिंगर के ऊपर आप लगा देते हो और उससे आप स्लाइड कर सकते हो, जैसे मेरा साउंड आ रहा है सिमिलर साउंड आएगा उसमें से
1: जी
0: भी, लेकिन उसमें फिंगर ब्लॉक हो जाती है। तो अब मैं जब मेरे गुरुजी वायलिनिस्ट है तो मैं वायलिन सुन सुन के सीख रहा था, और थोड़े टाइम के बाद ऐसा

0: फिंगर ब्लॉक हो जाती है। तो अब मैं जब, मेरे गुरुजी वायलिनिस्ट है तो मैं वायलिन सुन सुन के सीख रहा था, और थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि अरे फ्रेट्स के वजह से मुझको वो स्मूथनेस आई नहीं रही है जो वायलिन पे आती है,
1: अच्छा
0: वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है
1: हाँ
0: और वो
1: हाँ
0: बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है।
1: जी
0: तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया, और मुझे ये एक स्लाइड मेकर है जो यूएस में है,
1: अच्छा
0: वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनको आपको रिंग फिंगर का साइज देना होता है और फिर वो
1: बना करके
0: बना
1: आपको
0: करके
1: भेज
0: भेजते
1: देते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: तो उनसे मैंने ऑर्डर किया और फिर मैंने सीखने लग गया। तो बेसिकली ये एक रिंग है, मतलब जो जो अपनी नॉर्मल रिंग होती है वैसी रिंग है,
1: जी जी
0: और उसको एक बार अटैच्ड है, और वो बार मोहन वीणा का जो बार होता है वैसा ही है, बट बहुत छोटा वर्जन है उसका।
1: अच्छा
0: और बस वो जब यूज कर रहा होता हो तो मैं मेरी फिंगर से उसको पोजिशन में रखता हूँ, और जब
1: हाँ
0: नहीं यूज करना हो तो वो पीछे लटकते रहता है और वो फिंगर भी फ्री हो जाती है, तो मैं
1: अच्छा
0: फिंगर से भी बजा सकता हूँ।
1: अच्छा तो अब उस धुन की तरफ बढ़ते हैं जो आपने खुद बनाई होगी, उसकी झलक हमें सुनवाएं। या कोई ऐसी धुन जो किसी और कलाकार की आपने सुनी है और आपको बहुत पसंद आई, आपने उसे रिप्रोड्यूस किया।
0: हाँ, ऐसे तो है। तो एक धुन है राग देश में,
1: जी,
0: जो एक्चुअली मैंने रिप्रोड्यूस करने से ज्यादा

0: अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की दूसरी कड़ी। तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इनसे मिलिए।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप कौन हैं?
1: मैं लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसकी तुम आरती कर रहे थे।
0: लक्ष्मी देवी माँ, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।
1: मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गरीब दास, तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मांगो, क्या मांगते हो?
0: मैं क्या मांगू देवी माँ? मैं
1: धन, संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूँ गरीब दास। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
0: लेकिन देवी माता, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मैं
1: अरे, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है गरीब दास? मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों चौंधिया रही हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो?
0: आपका रूप ही ऐसा है देवी माँ, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी कभी देखी नहीं।
1: घबराओ नहीं गरीब दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो जी चाहे मांग सकते हो।
0: देवी माँ, क्षमा करना, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का तनिक समय दीजिए।
1: गरीब दास, मैं तुम्हें रात भर का समय देती हूँ, खूब सोच लो। सुबह का सूरज निकलते ही मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं

0: कृपा देवी माँ, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। धनिया, अरे ओ धनिया है, सो गई। अरे उठ तो है, अरे ये तो बेहोश पड़ी है, लक्ष्मी जी को देख के बेहोश हो गई। धनिया, ओ धनिया, अरे आंखें खोल धनिया।
1: अरे वो औरत गई?
0: औरत? अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी माँ।
1: लक्ष्मी जी?
0: हाँ माता लक्ष्मी, हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी।
1: वरदान?
0: हाँ सवेरे फिर आएंगी, पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे?
1: अरे दया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मुरझा आ गई।
0: अरे मेरा भी तो यही हाल था धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: मैं बताऊं?
0: ओहो तो जल्दी से बोल।
1: सुनो, तुम कहते थे ना मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका।
0: ओफो तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
1: हाँ हाँ वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देते हो पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
0: अरे ए धनिया तू समझती क्यों नहीं, देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों ना मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। है झुमका तो बस कानों में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा।
1: झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से?
0: अरे धनिया तू कैसी बातें करती है, देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा? राम राम राम, अरे भगवान मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ।
1: क्या सोच रहे हो?
0: मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है, गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं, क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और 4 दीवारों वाला घर मांग ले। बस हम धूप में ना जलेंगे, ना पानी में भीगेंगे, ना सर्दी में ठिठुरेंगे।
1: हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची, घर।
0: हाँ देवी जी आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ हमें घर दे दो, एक छत वाला 4 दीवारों वाला एक घर, ठीक है ना धनिया?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, घर।
0: हाँ तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ, देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है।
1: एक बात कहूँ?
0: बोल।
1: लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा?
0: जो मांगेंगे वही मिलेगा।
1: तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों ना मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो?
0: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ याद आया, एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था, मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं।
1: अच्छा?
0: अरे हर गली फू फू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूं कि हे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीबदास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और मेरी धनिया, हाय मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी।
1: और मेरे सोने के झुमके?
0: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरे लिए सोने का चंदर हार ले दूंगा।
1: हाय सोने का चंदर हार?
0: हाँ चंदर हार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी, सो जा।
1: अरे हाँ हाँ तो फिर तुम ही सो जाओ, जल्दी से सो जाओ।
0: थानेदार क्या, थानेदार तो सलाम मारेगा।
1: सो जाओ सो जाओ।

0: Tania. तानिया सो गई क्या?
1: नहीं तो
0: ससुरी नींद क्यों नहीं आ रही? तानिया मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है।
1: आप क्या सोचने लग गए?
0: सोच रहा हूं देवी जी रोज रोज तो वरदान देने नहीं आएंगी। जो कुछ मांगना है एक ही बार मांग लो। कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो।
1: ए? कलेक्टर साहब से भी बड़ी?
0: हाँ तानिया तुझे याद है एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे, इस सड़क से एक मोटर निकली थी, मोटर में झंडा लगा हुआ था और सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था, मालूम है कौन था वो?
1: कौन था?
0: सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास चार मोटरें हैं, चार कोठियां हैं, चार बीवियां हैं, चार
1: हाय दैया चार।
0: हाँ धनिया सब कुछ चार चार। अरे रे क्या हुआ धनिया, क्या हुआ?
1: तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी चार बीवियां रखोगे।
0: नहीं रे मेरी तो एक धनिया ही चार के बराबर है। मेरा मतलब था धनिया मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी चार मोटरें होंगी, चार कोठियां होंगी, चार
1: हाय सब कुछ चार चार। मेरे झुमके भी चार चार।
0: तेरे झुमके भी चार चार
1: और चंदरहार भी चार चार।
0: ओ चंदरहार भी चार चार।
1: हाय हाय।
0: लेकिन धनिया सुन अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले।
1: अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते।
0: सारी रात गुजर गई हम सो भी ना सके। देवी लक्ष्मी माँ आप आ भी गई?
2: हाँ मैं आ गई गरीब दास। मांगो क्या मांगते हो?
0: देवी माता क्षमा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीब दास?
0: मैं सच कह रहा हूं देवी माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब दास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
2: लेकिन क्यों?
0: देवी जी देवी माँ मोटर बंगला हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके, आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है तो ये सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा, हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी। नहीं नहीं देवी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी रूखी सूखी और ये आसमान की छत कबूल है। सोने का वो बंद पिंजरा हमें नहीं चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर हमारी सांस घुट जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए।
2: गरीब दास तुम घसियारे हो लेकिन बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हूं। लो अपनी ओर से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं, इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी।
0: ये क्या है देवी?
2: ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता। इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती। इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती। इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान प्रेम सुख शांति और संतोष का उजाला होगा। अंधेरे

0: तेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिट्टी के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे। ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा। इसे संभाल के रखना।
1: धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता धन्य हो। मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा।
0: तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बने, ज्ञानी बने, ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे, तभी वास्तव में इस देश में दिवाली होगी। दिवाली, दिवाली।

मंगल वरदान हवम हिल के अंतर्गत अभी आपने कुंभेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत यह नाटिका सुनी।

ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नारानिया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धड़कन से, कुमार सानू की आवाज में, समीर के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों।

0: का गुलदस्ता और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कसूर फिल्म का गीत, उदित नारायण अलका याग्निक का गाया, समीर के लिखे बोल हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में कसूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत के बोल लिखे थे, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

0: दी,
1: हाँ ये देख
0: कैसा है।
2: हैप्पी बर्थडे बॉय।
0: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शेंडे, कलापनी कोमाकली की आवाजों में पहेली फिल्म का गीत। संगीत पर किया है इस गीत को MM करीम ने।

पहली फिल्म का गीत सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और कलापनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत गली में चांद निकला, जख्म फिल्म से, अलका याग्निक की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत MM करीम का ही है, फिल्म का नाम जख्म।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, एमएम करीम का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की

0: यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं।

0: और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: इनके टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को

0: अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया रास्ता फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का लिखा गीत एंड दत्ता का संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आर जी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अगला गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा, फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है घर। गुलजार के बोल आर डी बर्मन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आर जी बर्मन का संगीतबद्ध किया, फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना, शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत, इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी

बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानि हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम।

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत, ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, यह कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पारिजात की खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सहमे गुलशन में फूलों के हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कनों की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है। सच कहूं बुझती नहीं ये शम्मा, जले जाती है।

आने से समा और भी पुरनूर होता गया। रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ, ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात। इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है, ये अफसानाए मोहब्बत हरफों में कब बयां होता है।

गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें, ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना,
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: ढलती जाए रात। जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: FM बैंड 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। शतम रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस

0: विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships.